मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास का सातवां दिन, तदनुसार 28 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 44 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। हिंदी समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन। जल्दबाजी की रेस में इंसान कभी भी जीत

थकता नहीं है, बस थकता है, फिर वह जीवन हो या कार्य। इसलिए धैर्य सहित लयबद्ध होकर ही सक्रिय रहना उचित है। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वर का अंश होता है। साक्षात ईश्वर की अनुभूति के लिए अपना आवरण, अपना आचरण हमें शुद्ध रखना होता है, अपने कर्म हमें नेक रखने होते हैं, तभी नर सेवा नारायण सेवा बनती है। एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य को भावनाओं के आकार में, सांचे में देखता है, तो अपने कर्म भी, अपना व्यवहार भी उसी के अनुरूप करता है। धरती पर चलते फिरते परमात्मा के अंश को अपने आसपास महसूस कीजिए और इस भजन का आनंद लीजिए।

को अपनी माता मानता है, इस अंबर को अपना पिता मानता है, और प्रकृति से मिलने वाले प्रत्येक उपहार के अनुरूप जब जीवन जीता है तो जीवन सुव्यवस्थित भी लगता है, संकल्पित भी लगता है और समृद्ध भी लगता है।

जीवन में प्रत्येक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार सुख होता है, कई बार दुख होता है, कई बार परिस्थितियाँ विषम होती हैं तो कई बार सम होती हैं। लेकिन इन सब में जो मनुष्य आध्यात्म से जुड़ा होता है, जिसके अंदर करुणा का भाव होता है, जिसके अंदर नेकी होती है, ईमानदारी होती है, उसी के पास हौसला भी होता है, क्योंकि वो साक्षात महसूस करता है कि सभी शक्तियों का वास मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर विराजमान है, सत्य मेरे भीतर विराजमान है।

सच्चे मन से जो कुछ भी मांगा जाता है परमात्मा अवश्य सुनते हैं। जब हम सूक्ष्म सूक्ष्म कणों में दीर्घ दीर्घ अर्थों को समझने लग जाते हैं, तब हम साक्षात अनुभूति पाते हैं कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति से लेकर आज तक, चाहे वो चुंबकीय कणों में किसी भी प्रकार से विराजमान है, वो शक्ति, वो दैवीय स्वरूप सदैव विराजमान है। आवश्यकता है केवल अपने मानसिक और बौद्धिक स्तर को वहाँ तक पहुँचाने की।

परम शक्ति सभी श्रोताओं के परिवारों में, आसपास समाज में, देश में शांति बनाए रखें, अपनी अनुकंपा बनाए रखें, इसी भाव के साथ आज का ये कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव ना होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम भाइयों। कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे, कृषि यंत्रा की देखभाल इस बारे में। और भाइयों, ये देखे हैं कि जो टाइम है अपना भाई, बिल्कुल ही गर्मी का चल रहा है, जेठ का बिना भी, और बहुत सी जो भी काले भाई अंधी अंधड़, और बहुत गर्मी भी ठीक रही है। तो चाहे भाइयों की तैयारी जुताई भी इस टाइम पर हुई है, भाई आगे चाल किसान भैया ने की तैयारी खाद भी ली है, और आगे चाल की इवन्यू देखे हैं भाई, जड़े धान का एरिया है भाई, उड़े भाई कद्दू भी करेंगे, अपने गाड भी मारेंगे और अपने धान भी लगाऊंगे। आधुनिक बहुत से अंतराज कृषि क्रिया के चल रहे हैं भाई, चाहे वो धान लगाने वाली मशीन है, कि तय धान कटाने वाली मशीन है भाई, कि तय अपना चाहे वो कृषि यंत्रा में भाई अपनी स्प्रे की टंकी है, कि तय भाई हरो कल्टीवेटर, और बहुत से भाई नाज पद काटन के, चाहे वो थ्रेसर की हम बात कर लिया हाँ, अड़म्फा की बात कर लिया हाँ, कंबाइन की बात कर लिया हाँ, तो बहुत से तरीके तो आजकल आधुनिक यंत्र हैं वो चल रहे हैं, कि तो रोटावेटर है, कि तो सुपर सीडर है भाई, कि तई फिलहाल अपना जो काम चल रहा है वो लेजर लेवर जो अपनी गोड़ी है उसका भी चल रहा है। तो कृषि यंत्रा में जो है बहुत सावधानी है अपने थोड़ा, हाँ भाई क्या करें कि पैसा आजकल ये देखे हैं कि महंगवाड़ा का टेम आ रहा है, बिल्कुल महंगाई का टेम है भाई, थोड़ा हाथ ने डांट की सतर्कता रख की, बिल्कुल जानकारी के साथ हम काम कराएंगे, खर्चा नाम घटावांगे भाई। बात यह है कि चाहे वो कृषि यंत्रा नाम देखभाल की में भाई, वो चाहे ग्रीस पानी करना हो, या भाई इसकी साफ सफाई करनी हो भाई, कितना रेडिएटर की सफाई है भाई, कितना अपना धूल माटी हटानी है, क्योंकि जब ट्रैक्टर गोड़ी में चल रहा है, धूल उठे है, या फिर कितना भाई कटाई कढ़ाई में चल रहा है मशीन अपनी, तो उसने दिन प्रतिदिन जो अपना ग्रीस है, पानी है भाई, देखभाल है, साफ सफाई है, इसी तरीके से जो ट्रैक्टर है अपना भाई, ट्रैक्टर चाहे वो बान में हमारा चलता हो, चाहे भाई कितना कद्दू करण में चलता हो, गायर का भर जा है, बहुत से जगह ये देखने में आया है कि भाई अपना एकदम तो संभाल दे नहीं भाई, चाहे सर्विस की उसके में बात आ जाए, तेल पानी पूरा करने की बात आ जाए, क्योंकि ऊपरला जो डीजल है वो तो अपना चल रहा है, नीचे भाई अपना कूलेंट है वो भी किसान भाई ने पूरा करना पड़े अपनी मशीनगिरी में, चाहे वो ट्रैक्टर का हो, चाहे भाई वो कंबाइन का हो, इस तरीके तक ग्रीस पानी है भाई, जो बैरिंगा में ग्रीस करने की बात आओ, या फिर अपना नीचे जो हाइड्रोलिक नीचे तेल हो है वो पूर्ति की बात आ जाए, तो सारी चीज़ जो है खेती बाड़ी में संभाल की हैं। इस तरीके से चाहे भाई कल्टीवेटर की हमने कायत बदलनी है, या फिर उसमें भाई कितना रंग पेंट मारना है, कितना जर गया हो तो, या फिर कितना हर्रो की बात आओ तो भाई उसमें ग्रीस करना है, बहुत से काम

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भविष्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह संपर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में नौवें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदायु किमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू लेयुंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
4: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to the Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, will officially launch the PM Family Care Tracker pilot project in Gandhinagar this evening. This new initiative is aimed at improving healthcare tracking and welfare.

प्रातः 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, 7:35 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे, आपके अनुरोध पर फोन इन कार्यक्रम दोपहर 1:10 पर, प्रातः 9 कार्यक्रम एक कलाकार। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

जाएगी जल बचत, कल बचत और बिजली के सदुपयोग के बारे में। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। घर आंगन में विषय रहेगा मुलाकात सोशल मीडिया के लोकप्रिय चेहरों से, श्रीमती सीमा वशिष्ठ और श्रीमती पूनम वशिष्ठ से। भेंट करता है अर्चना मिश्र। शाम 5:30 पर कार्यक्रम युवा संसार में आज कंपेयरिंग का विषय रहेगा सांप्रदायिक सद्भावना के मूल्य, अल्पसंख्यकों को रोजगार सुविधाएं और कार्यक्रम युवा पसंद।

दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम खेत खलिहान में आज आप सुनेंगे कपास फसल की देखभाल कैसे करें इस विषय पर चर्चा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे बातचीत मछली तालाबों की देखभाल के बारे में वार्ताकार डॉक्टर आशा हुडा। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आपने सुना कलाकार सुरेंद्र शर्मा को। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है समसामयिक चर्चाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर भूमिका शर्मा के साथ, और आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं से बचाव के बारे में। मानव जिस परिवेश में रहता है अपने मस्तिष्क से खोजी होता है, तो कुछ ना कुछ प्रकृति और कृत्रिम अपनी सोच के साथ बना लेता है। अपनी सुविधाजनक चीज़ों के निर्माण से लेकर उनके निस्तारण तक का एक चक्र मनुष्य ने अपने आसपास चलाया हुआ है। उस चक्र के मध्य बहुत सी ऐसी आपदाओं का जनक भी मनुष्य हो चुका है, जिनके बचाव के लिए, राहत के लिए उसे स्वयं ही अपने आप को तैयार करना होगा। हाल ही में जो वेनेजुएला में घटना हुई और हजारों की संख्या में जानमाल की हानि हुई, उससे सबक लेना चाहिए कि आज हम धरती के किसी भी हिस्से पर हों, चाहे हम भारत में हैं या कहीं पर भी हैं, कोई भी प्राकृतिक आपदा कहीं पर भी किसी भी समय आ सकती है। और उस समय जब आपदा आती है तो विवेक उसी का काम करता है जो पहले से तैयार होता है। पहले से तैयारी के लिए बचाव के बारे में यदि ये स्थिति हमारे सामने आए तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना होगा। मॉक ड्रिल्स बहुत आवश्यक हो गई हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड के साथ हों, वो भूकंप रोधी इमारतों के भीतर हों, या किसी ऐसे स्थान पर जब आप खुले में मौजूद हों कि अपना बचाव कैसे करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी क्रियाकलापों के लिए मनुष्य को जब भी अपने दैनिक जीवन में घर से बाहर निकलता है तो केवल पैसा कमाने की आपाधापी में ना रहे, केवल काम के निपटाने की आपाधापी में ना रहे, बल्कि ये भी सोचे कि मेरे आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो मुसीबत का कारण बन सकती है, ताकि उसे सहूलियत के अनुसार रखा जा सके, उसे उसी ढांचे में रखा जा सके कि वो उस समय मुसीबत का कारण ना बने। छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी सोच से ही एक ऐसा बड़ा प्रभाव समस्या के समय पर हौसला बन जाता है। बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

0: जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बेचारी का मन।
1: मन समझती है ना आप?

एक दिन एक थका प्यासा मुतासर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उससे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

मनुष्य जीवन में जब शंकाओं से घिरा होता है तो खुद पर भी संदेह करता है, अपनी काबिलियत पर, अपनी सोच पर, क्या मैंने ये सही किया है। जब भी कोई भी वैज्ञानिक किसी सोच को किसी लैब के अंदर एक ऐसे आकार में ढालता है कि वो दुनिया के काम आ सके, और यदि वो यह नहीं सोचता कि इसका प्रकृति पर और दुनिया के जीवन पर, शैली पर क्या असर होगा, तो वह खोज, वह

आविष्कार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी प्रभावकारी क्यों ना हो, वह निरर्थक हो जाता है। आज जब आगजनी की घटनाएं होती हैं तो हम अक्सर सुनने में आता है हमें कि रास्ते ब्लॉक हो गए, आने जाने का मार्ग नहीं बचा। तो अपनी इमारतों में अपने आसपास सुनिश्चित करें कि यदि इस भीषण गर्मी में जब 45 डिग्री के आसपास तापमान है, किसी शॉर्ट सर्किट से, किसी एसी ब्लोअर से, कहीं पर भी कोई आगजनी की घटना होती है तो क्या यहाँ से प्रॉपर निष्कासन का मार्ग है कि नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे सुनिश्चित करें कि ऐसा होना चाहिए, अन्यथा केवल एक इंसान नहीं जाता, परिवार और पीढ़ी उजड़ जाती है। हमें सोचना होगा कि जीवन सबसे अनमोल है, और आज यदि हम अपने आसपास नज़र दौड़ा कर देखें तो जीवन ही सबसे सस्ता नज़र आता है। हमें इसे अनमोल और अमूल्य और विलक्षण बना कर रखना होगा, तभी हमारे होने का, हमारे आविष्कारों का, हमारी सुविधाओं का और हमारी उस कर्मशीलता का होना प्रभावकारी और सार्थक होगा। जब हम ये सोचेंगे कि जन कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम आपदाओं का भी सामना जज्बे के साथ, हौसले के साथ इस प्रकार कर पाएंगे कि ऐसी चीज़ों का ही नुकसान हो जिनकी धन से या किसी भी क्रियाकलाप से भरपाई हो सके, जान का नुकसान ना हो।

एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तो राष्ट्र निर्माण होता है, वहीं एक इंजीनियर जब किसी रसायन लैब में खड़ा होकर मानव बम बनाता है तो आतंकवाद का जन्म होता है। कर्म के भी अपने धर्म होते हैं, जो धर्म जो कर्म मानवता को संजोता है, उसके हित में काम करता है, वही धर्म है। अन्यथा जो कुछ भी मानवता को सुलगाए वो सब कुछ अधर्म है।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

लाजवाब करते करते हम सभी आइए संकल्प लें कि हम ऐसे ही कर्म करें और अपने आसपास ऐसा ही माहौल तैयार करें कि हम सब एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर सभी समस्याओं से जूझने के लिए, निपटने के लिए सुरक्षा उपकरणों का इस प्रयोग और निर्माण साथ में ही करें और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें।

0: इसी के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए

0: स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ाने भरी गई। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी। उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
7: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
8: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफ

0: गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के

0: महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सभी साथी मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।
0: जय हिंद साथियों, आज मैं सृष्टि
2: और मैं सलोनी
0: आप सभी का इस बालकुंज कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
2: जल्दबाजी में न खोए अपनी जान, सड़क सुरक्षा का सदा रखे ध्यान। आपका एक गलत कदम भारी पड़ेगा, पूरा परिवार फिर उम्र भर लड़ेगा। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देना चाहती हूँ कि वाहन चलाते समय हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। सड़कों पर बढ़ते हादसे केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपनों को खोया है। सड़क पर सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। साथियों, दुनिया भर में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इनमें सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की होती है। सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं है बल्कि ये दूसरे के जीवन के प्रति सम्मान है। जब आप अपना हेलमेट पहनते हैं या सीट बेल्ट लगाते हैं तो आप केवल जुर्माना नहीं बचा रहे होते बल्कि आप अपने परिवार की खुशियाँ बचा रहे होते हैं। आइए कुछ सुरक्षा के नियमों को याद करें। गति पर नियंत्रण याद रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। सृष्टि, आप भी क्या इसमें कुछ जोड़ना चाहोगे?
0: जी सलोनी, वाहन चलाते समय हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने और कार चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। तेज गति से वाहन ना चलाएं, नशे की अवस्था में वाहन बिल्कुल ना चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग ना करें।
2: साथियों, सड़कें हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए हैं, जान लेने के लिए नहीं।
0: साथियों, मैं सांप्रदायिक सौहार्द का मूल्य भी बताना चाहती हूँ।
2: बताइए।
0: साथियों, हमारे देश भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सांप्रदायिक सौहार्द हमें प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। हमें कभी भी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी के साथ सम्मान और सहयोग का व्यवहार करना चाहिए। जब समाज में आपसी प्रेम

0: विश्वास बना रहता है तभी देश विकास की ओर बढ़ता है। आइए हम सभी मिलकर भाईचारे, शांति और एकता की भावना को अपनाएं और अपने देश को मजबूत बनाएं।
1: साथियों, मैं भी सांप्रदायिक सौहार्द के मुख्य मूल्य बताना चाहूंगी। आपसी आदर और सम्मान, सहिष्णुता, भाईचारा और सहानुभूति, संवाद और समझ।
0: साथियों, अब सुन लेते हैं एक गीत।

0: गीत कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा सृष्टि।
2: साथियों अब सुन लेते हैं CIET द्वारा तैयार किया गया ये कार्यक्रम जिसका शीर्षक है संकल्प की धनी बसंती।
3: दोस्तों कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल कर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चल चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
3: उसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।
0: ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे

0: बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं।
1: सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने। हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
2: और क्या
1: है आखिर तुम?
3: यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
4: कार्यक्रम कैसा लगा साथियों?
5: बहुत अच्छा सृष्टि।
4: सलोनी अब कर लेते हैं अपने स्टूडियो में आए साथियों से बातचीत। तो पहला साथी अपना नाम बताए।
6: सुहानी।
4: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
6: एक कविता।
4: सुनाइए।
6: आओ दोस्तों समझे पानी की कहानी मेरी जुबानी। पानी सबकी प्यास बुझाता, इसके बिना पेड़ पौधे मुरझाते। पानी से हो साफ सफाई, पानी से हो कपड़ों की धुलाई। जब नल में नहीं आता पानी, मुझे याद आ जाती है नानी। पानी बिन कैसे मैं नहाऊं, हाथ मुंह धोकर ही मैं स्कूल को जाऊं। आओ मिलकर पानी बचाएं, बिना वजह पानी व्यर्थ ना गवाएं। पानी से बनती है बिजली, जो अंधेरे से प्रकाश करे। पानी से ही बनते बादल, फिर वर्षा भी करते आकर। पानी देता है जीवन दान, आओ मिलकर बचाएं जल, तभी सजेगा आने वाला कल। धन्यवाद।
4: सुहानी आपने हमें बहुत अच्छी कविता सुनाई और आपने सही कहा, जल हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना मनुष्य पशु पक्षी और पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं है।
7: प्रियांश आज आप क्या सुनाओगे?
8: एक कविता।
7: सुनाइए।
8: हरे भरे ये पेड़ बड़े, हरदम रहते ये खड़े। बारिश में ये खूब नाचते, डाली डाली फूल खिलाते। तेज धूप से हमें बचाते, हम इनकी छाया में ही सुस्ताते। मीठे फल ये हमें खिलाते, प्रकार का पाठ सिखाते। पेड़ पौधे हमारे हैं, यह सबके प्यारे हैं। सर्दी गर्मी सहते हैं, कभी नहीं कुछ कहते हैं। फलने वा बरसाते हैं, हम सब मिलकर खाते हैं। आओ इनसे प्यार करें, हम सब मिलकर हरा भरा संसार करें। धन्यवाद।
7: आराध्या आज आप क्या लेके आए हैं?
9: मैं आपके लिए गर्मियों के बारे में जानकारी लाई हूँ।
7: बताइए।
9: साथियों जैसा कि हम देख रहे हैं, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अगर आप इस मौसम को मज़ेदार और आनंददायक बनाना चाहते हैं तो कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कीजिए, जैसे नींबू पानी, सत्तू, आम पन्ना या नारियल पानी। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम खाएं। ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। कॉटन और हल्के रंग के कपड़े पहने, इससे शरीर को राहत मिलती है। आप गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल भी जा सकते हैं, यह एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। लेकिन जब भी आप स्विमिंग पर जाएं, किसी बड़े को ज़रूर साथ लेकर जाएं। योगा करना भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। गर्मी से निजात पाना चाहते हैं तो एक पेड़ अवश्य लगाएं। यह हमारी आसपास की हवा को साफ रखता है और इससे हमारी आसपास का तापमान भी कम होता है।
4: आराध्या इन गर्मियों में हम इन नियमों का अवश्य पालन करेंगे, है ना साथियों?
7: बिल्कुल सही कहा सृष्टि।
4: अगला साथी अपना नाम बताए।
10: लावण्या।
4: आज आप हमें क्या सुनाएंगे?
10: एक कविता।
4: सुनाइए।
10: मेहनत का जिसका नाम है मेहनत का फल। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मैं 10 साल में कई हल चलाना भूल ना जाऊँ। अब बादल भी घबरा गए और कहीं हम भी बरसना ना भूल जाए, तो वे तुरंत बरसने लगे और अब किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वे हाथ मलते ही रह गए। सो लगे रहे, भले ही परिस्थितियों अभी हमारे विपरीत है, लेकिन आने वाले समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद।
7: आयुष, आज अभी हमारे लिए क्या लेके आए हैं?
2: एक कहानी
7: सुनाइए।
2: एक माली था, उसके पास एक गधा था। माली गधे को खूब खिलाता पिलाता था। गधे को कोई काम धंधा न था, वह हरदम मौज मस्ती करता रहता था। लेकिन मालिक के पास गधे का मन नहीं लग रहा था। गधे ने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे कहीं और भेज दो। मालिक ने उसकी विनती सुन ली। अगले ही दिन मालिक ने गधे को धोबी के हाथ भेज दिया। धोबी गधे से खूब काम करा लेता, कपड़े के भारी भारी गट्ठर उस पर लाद देता, खाने को भी अच्छा देता था। लेकिन यहाँ भी गधा खुश नहीं था। उसने फिर भगवान से विनती की, हे भगवान, मुझसे इतना भोज नहीं ढोया जाता, मुझे किसी और जगह भेज दो। अगले दिन धोबी ने गधे को कुम्हार के पास भेज दिया। कुम्हार गधे से खूब मेहनत करवाता, काम में जरा भी ढील होने पर गधे को डंडों से मारता, ऊपर से खाना भी बहुत कम देता। थोड़े ही दिनों में गधा सूख कर कांटा हो गया। उसने फिर से भगवान से विनती की, लेकिन भगवान उसकी कब तक सुनता, गधे को किसी हालत में खुश नहीं था। गधा बहुत पछताया। वह सोचा कि इस सबसे अच्छा तो वह मालिक के पास ही था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी हालत में हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए।
7: आज के लिए साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए सभी साथी मिलकर बोलेंगे,
5: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बालकुंज, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। एक कलाकार में आज हम शामिल कर रहे हैं भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी भारत की स्वर कोकिला, जिन्होंने प्रत्येक विधा में भजन गाए, गाने गाए, और चाहे वो देशभक्ति का भाव हो या परिवार में किसी भी संबंध का भाव हो, प्रत्येक मनोभाव को छूने वाली एक ऐसी गायिका भारत के इतिहास में हुई, जिनका नाम लता मंगेशकर के रूप में हम उनको जानते हैं, जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में उनकी पहचान बनी। और आज वो भले ही इस भौतिक युग में हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़ से हमारे बीच सदैव जिंदा रहेंगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हर मन को, हर परिवार को, और शायद जिस भी अंश में देशभक्ति विद्यमान होती है वहाँ गहराई तक छूने वाले उस गीत से, जिससे एक समय पर जब वो पहली बार वो गाना सुना गया तो हर किसी की आंखें नम हो गई थी। ऐ मेरे वतन के लोगों,

मराठी संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर जन्मी लता मंगेशकर बचपन से ही संगीत और अभिनय की दुनिया से परिचित थी। उनके बचपन का नाम हेमा था, बाद में लतिका हुआ और फिर उसके बाद लता हुआ। 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया। 1942 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली लता जी ने अपने जीवन में 30,000 से भी ज़्यादा गानों में अपनी आवाज़ दी। केवल आवाज ही नहीं दी बल्कि मन को झंकृत किया, और उन झंकारों के बीच हमने भक्ति को भी महसूस किया, देश प्रेम को भी महसूस किया, उदासी को भी महसूस किया, प्रेम को भी जिया, उमंग को भी जिया, जीवन की तमन्नाओं को भी जिया। बातचीत को जारी रखेंगे, सुनते हैं ये गीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लता जी जब स्कूल में पढ़ती थी तो 5 साल की उम्र में जब संगीत का शुरुआती दौर वो सीख रही थी, उस समय स्कूल में उन्होंने बहुत से बच्चों को भी गाना सिखलाया। उनके पिता उनके साथ साथ, लता के साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चों को भी सिखाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब लता दीदी स्कूल में बच्चों को सिखा रही थी, अपने से छोटी उम्र के बच्चों को, तो शिक्षक ने उन्हें डांट दिया कि स्कूल में संगीत सिखाने की अनुमति नहीं है। और उसी दिन नाराज़ होकर लता जी ने स्कूल छोड़ दिया। कम उम्र में पिता के देहांत के उपरांत उन्हें परिवार की जिम्मेदारी मिली। केवल 13 वर्ष की उम्र में आर्थिक जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। अपना परिवार चलाने के लिए लता जी ने आजीविका कमाने के लिए घर से बाहर कदम रखा तो उनके करियर की शुरुआत गायकी से नहीं, एक्टिंग से हुई। महान संगीतकार गुलाम हैदर को लता मंगेशकर का गॉडफादर कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले लता जी की प्रतिभा को पहचाना और निर्माता एस मुखर्जी से उन्हें गाने का मौका देने की सिफारिश की। और उसके बाद देखते ही देखते आज तक लता जी कभी नहीं रुकी और इतने अनगिनत गाने गाए जो हर महीने में मन को छूते हैं। एक गाना सुनते हैं तो लगता है कि दूसरा इससे ज़्यादा अच्छा है, दूसरा सुनते हैं तो लगता है और ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने हमेशा खुद को ही चुनौती दी और सदैव खुद आगे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए स्वयं को प्रेरित करती रही।

स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का नाम भारतीय संगीत की उस मधुर परंपरा का पर्याय है जिसने दशकों तक श्रोताओं के हृदय पर अमिट छाप छोड़ी है। आवाज़ में कोमलता, भावों की गहराई और सुरों की निर्मलता का ऐसा अद्भुत संगम जो हर पीढ़ी को एक समान रूप से आकर्षित करता है। अब आप सुनेंगे एक ऐसा सदाबहार गीत जिसने प्रेम, प्रतीक्षा और मिलन की आकांक्षा को अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। गीत के शब्द विरह में डूबे हृदय की उस पुकार को स्वर देते हैं जो अपने प्रिय के आगमन की आस लगाए बैठा है। ये गीत

सादगी से परिपूर्ण, बिना किसी अनावश्यक संगीत सजावट के लता मंगेशकर के निर्मल और भावपूर्ण आवाज से सीधे श्रोताओं के मन में उतरता है राजेंद्र कृष्ण के सरल लेकिन गहरे भावों से भरे शब्द, और हेमंत कुमार की मधुर धुन इस गीत को कालजयी बनाती है। और लगभग 7 दशक बाद यह गीत नई पीढ़ी के बीच भी उतना ही लोकप्रिय है।

लता मंगेशकर केवल एक महान गायिका ही नहीं बल्कि अनुशासन और समर्पण की मिसाल भी थी। कहा जाता है कि वो रिकॉर्डिंग के लिए हमेशा समय से पहले स्टूडियो पहुंचती थी और गीत रिकॉर्ड करने से पहले उसके शब्दों का अर्थ, भाव और उच्चारण पूरी सावधानी से, धैर्य से समझती थी। वो मानती थी कि गीत तभी जीवंत बनता है जब गायक उसके भावों को पूरी तरह आत्मसात कर ले। बहुत कम लोग जानते हैं कि लता जी को फोटोग्राफी का भी शौक था। वो अपनी यात्राओं के दौरान कैमरे में प्रकृति और यादगार पलों को कैद करना पसंद करती थी। क्रिकेट टीम की उत्साही समर्थक थी। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, असमी, नेपाली और कई प्रकार की भारतीय भाषाओं में गीत गाए और उनकी आवाज़ आज भारत की सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है। हर अभिनेत्री और हर परिस्थिति के अनुरूप अपनी आवाज़ का जायका बदल लेने वाली लता दीदी, चाहे चुलबुला गीत हो, विरह की वेदना हो, भजन हो या गज़ल, लता जी की आवाज़ हर भाव में स्वाभाविक और सजीव प्रतीत होती है।

खामोशी फिल्म के इस गीत के बाद हम आपको सुनाएंगे लता जी की जादुई आवाज़ में शागिर्द फिल्म का लोकप्रिय गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों और संगीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मधुर संगीत से सजा हुआ गीत आपको सुनाएंगे। अनुपम गायकी लता मंगेशकर जी ने दी है। ये भावपूर्ण गीत जिसमें विरह की वेदना है, बिछड़ने का दर्द है, इस गीत में बहती हवा से ही विनती करती हैं कि वो कुछ पल के लिए ठहर जाए, मन की बातें अभी अधूरी हैं। लता जी अपने शब्दों से, अपने स्वर से, अपने सुर से केवल एक गाना नहीं पिरोती थी, बल्कि सुनने वाले के जहन में इस प्रकार से उनकी आवाज़ घर करती थी कि सुनने वाला अपने आप को उसी वातावरण में, उसी माहौल में और उसी भाव में महसूस करने लगता था। यानी कि लता जी जैसे जिसकी कल्पनाओं को चलाना चाहे वैसे अपनी आवाज़ से चला लेती थी।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
4: कार्यक्रम एक कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। उनके व्यक्तित्व की विशेष बात थी कि वो जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे उतनी ही जमीन से जुड़ी रही। उन्हें शास्त्रीय संगीत से गहरा लगाव था और अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के चलते भी वो नियमित रूप से रियाज अवश्य करती थी। उनका विश्वास था कि संगीत में सीखने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती। उन्हें खुला आसमान, हरियाली और शांत वातावरण बेहद पसंद था। अब प्रस्तुत है उनके मन से जुड़ा हुआ ऐसा ही एक मनमोहक गीत, जिसमें स्वतंत्रता है, उल्लास है और खुले आसमान में उड़ने की कल्पना को बड़ी खूबसूरती से अभिव्यक्त किया गया है। लता मंगेशकर जी की निर्मल आवाज इस गीत में मानो एक उड़ते हुए पंछी की चंचलता और आनंद को साकार कर देती है।

0: स्वतंत्र विचारों वाली लता मंगेशकर अनावश्यक प्रचार से अक्सर दूर रहती थी। वो मानती थी कि कलाकार की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, किसी शोर शराबे से नहीं, और यही सादगी उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन गई। धुन और बोल को बहुत जल्दी आत्मसात करने वाली लता मंगेशकर तब तक संतुष्ट नहीं होती थी जब तक उन्हें यह न लग जाए कि ये गीत उन्होंने अपने भावों के साथ पूरी तरह न्याय करके गाया है। और अपने ही गीतों को वो स्वयं नहीं सुनती थी, वो कहती थी यदि मैं सुनूंगी तो मैं इसमें और भी गलतियां निकाल दूंगी। अब प्रस्तुत है 70 के दशक का एक अत्यंत लोकप्रिय युगल गीत जिसमें प्रेम की मासूमियत, चंचलता और मन की अनकही भावनाओं को अपने शब्दों से, अपनी धुन से लता दीदी ने प्रस्तुत किया है। सुनते हैं उनकी जादुई आवाज़ में किशोर कुमार जी के साथ इस युगलबंदी से उपयुक्त इस गीत को।
1: क्या कहा?

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में भी आपने सुना मधुर गीत। लता जी स्वयं अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई थी, अपने परिवार के सदस्यों का गहरा सम्मान, बहन भाइयों के प्रति उनका स्नेह, पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों की गरिमा उनके जीवन में हमेशा सर्वोपरि रहे और यही संवेदनशीलता उनकी गायकी में भी सहज रूप से सुनाई देती है। प्रस्तुत है एक ऐसा ही मार्मिक गीत जो एक बेटी के मन की व्यथा और बाबुल के प्रति उसके अटूट प्रेम की बड़ी भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। करुण आत्मीय और भावनाओं से भरे इस आवाज़ से एक धरोहर रूपी गीत आप सभी के बीच फिल्म जोनी मेरा नाम। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने, गीतकार इंदिवर और आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: जीवन के प्रत्येक रंग को, प्रत्येक संघर्ष को बहुत करीब से देखने वाली लता जी अपने एक साक्षात्कार में कहती हैं, जब उनसे कहा जाता है कि हर कोई चाहे कि लता जी जैसा जन्म मिले, तब लता जी कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे जैसा जीवन मिले, क्योंकि इतना आसान नहीं है लता होना। जो इंसान संघर्ष की भट्टी में तपता है, कुंदन बनता है, वो जानता है कि जीवन की तपिश क्या होती है। लेकिन उनके साक्षात्कार, उनके जीवन को करीब से महसूस करने के बाद एक बात कही जा सकती है कि जिसके पास सहन शक्ति है, उसके पास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी संदेश के साथ अब प्रस्तुत है एक सदाबहार गीत, जिसमें बिछड़ने की घड़ी भी है, मुस्कान भी है और अपनापन भी है, प्रेम की मासूम नोक झोंक भी है। आन मिलो सजना फिल्म का गीत, आनंद बख्शी गीतकार हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई और मनमोहक आवाज से अमर बनाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: समय सीमा के चलते हम आपको एक गीत पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के एक महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमान ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः के 10:55 हुए हैं, हमारी विशेष सभा अब शुरू होती है। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम,
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

0: मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं

जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में

इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस

उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष

सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़े एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती है। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राज

रामगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है

मीडियम वेव 262.64 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:30 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

0: घरांगन कार्यक्रम की सभी श्रोता बहनों को स्वाति का प्यार भरा नमस्कार और प्रीति आपको भी मेरा नमस्कार।
1: घरांगन सुनने वाली सभी बहनों को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार और स्वाति आपको भी मेरा नमस्कार।
0: देखिए प्रीति, अभी बच्चों की गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो खत्म होने पर है और एक तरह से जो पूरा ये जून का महीना हमने गर्मी के साथ
1: बहुत गर्मी के साथ
0: जद्दोजहद करते हुए गुजारा, लेकिन अब मौका है जब बच्चे बाहर निकलेंगे, नौकरी पेशा लोग हैं, महिलाएं हैं वो भी जाएंगी, स्कूल्स खुलेंगे, तो गर्मी अभी रहने वाली है और गर्मी भी जिसमें हम कह सकते हैं उमस से भरी हुई और ऐसी जो कि शरीर और स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है,
1: क्योंकि तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और घटने का नाम नहीं ले रहा है और बारिश की तो कोई संभावना ही दिखाई नहीं दे रही है।
0: जी, बारिश ने भी लुका छिपी खेली हमारे साथ जून के महीने में भी और हमें लगा कि आखिर तक आते आते मौसम फिर से सुहावना हो जाएगा, पर जैसे प्रीति कह रही है कि ये बादल अभी कम नजर आ रहे हैं तो ऐसे में थोड़ी सी सावधानी, अक्सर हम बात भी करते हैं और बहनें कहेंगी आम सा विषय है लेकिन बहुत समझने का और अमल में लाने का है कि इन गर्मियों में अपनी और परिवार की देखभाल कैसे हम करें। और सबसे मुख्य चीज़ यही है, तापमान बढ़ रहा है, तेज़ धूप है, हीट वेव्स हैं, तो अपने खान पान, बच्चों के खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें और साथ ही साथ जो घर से बाहर निकलने का समय है उसको आप कोशिश कीजिए कि दोपहर 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ना ही निकला जाए तो अच्छा है। बच्चों को चूंकि निकलना पड़ेगा तो कोशिश कीजिए कि अगर स्कूल में अनुमति मिलती है तो बच्चे जब स्कूल से बाहर आते हैं तो अपने साथ हैट कैप का इस्तेमाल करें, सनग्लासेस डाल सकते हैं और साथ ही साथ पानी का अधिकतम उपयोग वो स्कूल के दौरान भी करें।
1: और अगर ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं पीना, प्यास नहीं लग रही तो भी कोशिश करें कि हम पानी पीते रहें,
0: क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है और ऐसे में कई बार होता है कि खाना तक अच्छा नहीं लगता। बच्चे समस्या ये बताते हैं कि टिफिन हमने भेजा और वो यूं कहीं वापस आ गया है, बड़े भी नहीं खा पाते।
1: जी बिल्कुल,
0: तो इस चीज का ध्यान रखना है कि खाने में आप वैरायटी ले आए थोड़ी सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तला भुना मसालेदार या रात का बना खाना बच्चों को हमने परोस देना है, इस चीज का ध्यान रखना है और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स हमने अपने खाने में इस्तेमाल करने हैं, ताजा हरी सब्जियों से जुड़े हुए जो सलाद है हमारे, जैसे खीरा है, ककड़ी है और तरबूजा, खरबूज, ये सब चीजें आ रही हैं, तो बच्चों को कटा अगर आप नहीं भी दे सकती हैं तो कोशिश कीजिए कि बच्चे एक तो पानी का इस्तेमाल अच्छे से करें और स्प्राउटेड जो हमारे होते हैं मूंग वगैरह उसकी आप सैलड बच्चों को दे सकती हैं
1: और कई पेय पदार्थ है जिनको पी सकते हैं, जैसे छाछ हो गई, लस्सी हो गई, नारियल पानी हो गया, आम पन्ना हो गया, तो इनको लगातार पिलाते रहें ताकि भूख ना भी लगे तो पानी की पूर्ति तो होती रहे।
0: बिल्कुल, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और साथ ही साथ अब जैसे हमने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, सुबह हम काम के लिए निकले मन नहीं करता कि पार्क जाया जाए, छुट्टियों में तो रहा एक थोड़ा बहुत रूटीन बना कि हमने सोचा चलो बच्चों को भी पार्क ले चलते हैं, हम भी चलें, लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कोशिश कीजिए कि जब आपके आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं या बच्चे स्कूल्स के लिए तब भी सुबह या शाम एक समय रखें जब व्यायाम किया जाए, चाहे आप पार्क में सैर के लिए जाएं, थोड़ा समय योगा के लिए निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सारी चीजें आपने अपनी कंटिन्यू रखनी है और एक हेल्दी आपको जीवन जीना है क्योंकि मौसम तो देखिए बदलता रहता है
1: और पहनावे का भी ध्यान रखना है, हमें ढीले ढीले हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि हल्का रंग सुहाता है आंखों को
1: जी, बिल्कुल,
0: साथ ही साथ त्वचा के लिए भी,
1: और घर की खिड़कियों को भी ढककर रखना है भारी पर्दों से ताकि धूप अंदर ना आए और वैसे ही हमारा घर ठंडा रहे।
0: बिल्कुल, और पौधों का ध्यान भी रखना
1: जी,
0: है। देखिए पौधे ज्यादा से ज्यादा उगा तो रहे हैं हम अवेयर करते भी रहे हैं, उन पौधों के बीच में समय बिताइए, पार्क में जाइए, अपनी एक छोटी सी किचन गार्डन चाहे बालकनी में है, आपके घर के आंगन में है, उसका लुत्फ लीजिए और मैं तो कहूंगी मौसम का भी लुत्फ लीजिए, क्योंकि भारत जो है वो ऋतुओं का और अलग अलग मौसम का त्योहार है।
1: और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एसी का तापमान ज्यादा ना रखें, कम से कम उसको 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच रखें, उसको आप जितना कम करेंगे आपके घर के अंदर उतनी ठंडक होगी और अगर आपको कोई काम पड़ गया और एकदम से आप उस ठंडे वातावरण से बाहर निकलेंगे तो आप गर्मी को ज्यादा अनुभव करेंगे
0: जी। और इसके साथ ही बहनों सुन लेते हैं ये एक गीत।

0: जी हाँ, ज़िंदगी में साथ ही वो चीज़ है जो हमें बहुत आगे तक ले जाती है। और अगर हम बात करें प्रीति आपसी संबंधों की, तो इन संबंधों में जितना साथ बना रहेगा उतनी प्रगाढ़ता रहेगी, उतने
1: जी
0: संबंध मधुर होंगे और हम जिंदगी का सफ़र बड़ी ही आसानी से तय
1: तय
0: कर
1: कर
0: पाएंगे।
1: जाएंगे।
0: मानती हो ना इस चीज़
1: जी
0: को?
1: बिल्कुल
0: देखिए,
1: मानती
0: बहुत सी चीज़ें हैं हमारे संबंधों से आगे बढ़कर भी। कई बार ऐसा होता है कि अजनबियों से भी हमारे संबंध बन
1: संबंध
0: जाते
1: बन
0: हैं,
1: जाते
0: और
1: हैं।
0: उसका तरीका है सिर्फ और सिर्फ आपकी अभिव्यक्ति। आप किस तरह से सामने वाले से बात कर रहे हैं, सामने वाले की बात आपको कितनी समझ आ रही है।
1: और आजकल एक और तरीका है साथी, सोशल मीडिया।
0: सोशल मीडिया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं उसी पर आ रही थी
1: जी।
0: कि आज के दौर में हम देखें तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऐसे चेहरे जिनको कभी आपने देखा भी नहीं, वो आपके दिल के इतने करीब हो जाते हैं, बहुत सी बातें आपसे करते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ों के द्वारा, या कहें कि अपनी ऐसी ऐसी घटनाओं के द्वारा आपको आपको अंदर तक झकझोर देते हैं कि आपके वो संबंध क्या कहें, बहुत दूर तक वो आपके अपने साथी बन जाते हैं। ऐसे ही आज हमारे जो सोशल मीडिया के लोकप्रिय चेहरों के अंतर्गत हमारी जो

0: श्रेणी है। इसमें आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रसिद्ध चेहरों श्रीमती सीमा वशिष्ठ और श्रीमती पूनम वशिष्ठ से, और इनसे बातचीत करेंगे अर्चना मिश्र।
1: बहनों, घर आंगन कार्यक्रम में आज हमने दो ऐसी शख्सियतों को आमंत्रित किया है जिनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा, और अपने आप में वो दोनों एक मिसाल हैं। किस तरह से वो मिसाल हैं, क्या ख़ास बात है इनकी पर्सनालिटी में, ये हम इनसे बातें करेंगे और आप जानती जाएंगी। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं श्रीमती सीमा वशिष्ठ और श्रीमती पूनम वशिष्ठ। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहनों को बताना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया के जाने माने चेहरे हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है, वो व्यक्तिगत है, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएं। पहले हम सीमा जी से बात करना चाहेंगे। बताइए सीमा जी।
2: नमस्कार सभी को, मैं सीमा वशिष्ठ, हम रोहतक में रहते हैं और हम दो बहनें, एक ही घर में हमारी शादी हुई है। मेरे हस्बैंड और मेरे जो देवर हैं वो हम एक ही परिवार में इकट्ठे रहते हैं।
1: आप दो बहनें दो भाइयों के घर आई हैं। दोनों का ससुराल एक है?
2: एक है ससुराल।
1: जी जी जी। और परिवार में कौन कौन है मैम आपके?
2: परिवार में हमारे तीन बच्चे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं 2004 से, मतलब कि मैं बीमार ही रहती थी पहले, और मेरा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया था जिससे मैं चल नहीं सकती 2011 के बाद। 2004 से 2011 तक तो मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं थोड़ा बहुत वॉकर के साथ चल लिया करती, और जो भी मैं प्रॉब्लम में होती सब कुछ मेरी बहन ही संभाला करती। इवन मेरा बच्चा भी उसी ने पाला है, और मेरा जो घर का जो भी सारा काम है उसी ने संभाला है, मुझे भी बीमार को और मेरे बूढ़े सास ससुर को भी और मेरे बच्चों को भी उसी ने पाला है और उसी ने संभाला है। और वैसे हम पढ़ी लिखी हैं दोनों बहनें, नौकरी के लिए कोशिश करा करते, मैंने एमए कर रखी है हिंदी एमए
1: जी,
2: और मेरी बहन ने डबल एमए और बीएड कर रखी है
1: जी।
2: और पढ़ाई में हम ठीक थे, अच्छा मन लगा के पढ़ाई करा करते, सोचा करते जॉब करेंगे दोनों बहनें, पर सिचुएशन ऐसी आई कि मैं ज़्यादा बीमार रहने लगी, मेरे से फिर चलना बंद हो गया, फिर मैंने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवा लिया जो मेरा अनसक्सेस हो गया, और फिर मैं व्हीलचेयर पे आ गई।
1: ये अक्सर कहते हैं कि जो भगवान जी करते हैं कोई उसके पीछे उनकी मंशा रहती है, तो बहन के रूप में आपको देवरानी मिली है और एक बहुत मजबूत संबल है आपके जीवन में। आपने आप जिस भावना से, जिस तरीके से आप बता रही थी, आपके चेहरे पे जो भाव थे वो बता रहे थे कि आप ऋणी हैं अपनी बहन की, और बहन का ये कर्तव्य भी है देवरानी होने के नाते और बहन होने के नाते। पूनम जी आपका स्वागत है। अच्छा ये बताइए कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की प्रेरणा आपने कैसे ली, कैसे आपने ये सोचा कि ये शुरू किया जाए?
3: जय सीताराम सभी को। ये प्रेरणा मेरी बहन के दिमाग में विचार आया जी। मेरे हस्बैंड है वो इनको बार बार बोलते रहते थे कि कुछ है ना, आप है ना भाभी लेटे लेटे कुछ ऐसा भी कर सकते हो जिससे आपका माइंड ही इधर उधर बदली हो जाए, मतलब केवल केवल दर्द में दिमाग न रहे
1: जी।
3: इसी उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया कि क्यों ना कुछ सोशल मीडिया पे किया जाए। फिर करते करते करते करते सीमा ने ये कर दिखाया जी।
1: सीमा जी के वीडियोस हम देखते हैं, इनके ब्लॉग्स हम देखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली आप बोलती हैं, बहुत आत्मविश्वास के साथ आप संदेश देती हैं और हर तरह के विषय को आप कवर करती हैं
2: जी मैम,
1: और ये बड़ी बात है आपकी। देखिए एक दिक्कत हुई आपको, लेकिन ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति बख्शी, इतनी
3: परिवार का ऐसा सहयोग दिया ना कि हम बीमारी से हार नहीं पाए, बीमारी को ही हमने हरा दिया।
1: यही जज्बा होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। ईश्वर जाने किस रूप में कब हमारी
2: देखो
1: कैसी परीक्षा।
2: ये बात है, अगर हम मिलजुल के संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो कहते होंगे कि बड़ा परिवार के दुख भी हो सुख
3: नहीं,
2: भी पर हमेशा बड़े परिवार के सुख ही होते हैं, दुख कोई नहीं होता। जैसे ज्वाइंट फैमिली में हम रह रहे हैं तो मेरी बहन ने, ये मेरा देवर है जो, इसने सबने, दोनों भाइयों ने सहयोग दिया है और उसी की वजह से हम आज यहाँ तक बढ़ पाए। पहले तो मैं थोड़े जोक वगैरह की बना करती, फिर मोटिवेशनल बनाने लगी। आजकल मिनी व्लॉग का ज्यादा लोग पसंद करते हैं तो फिर हम मिनी व्लॉग बनाने लगे।
1: आपके मिनी व्लॉग्स हम देखते हैं, लगता है थोड़ा सा और बोल दें आप। देखिए अगर आप बहुत प्रभावशाली ढंग से आती हैं सामने और बहुत अच्छा आप बोलती हैं, और वो इस तरह की बातें होती हैं आपकी जो हर घर की बातें होती हैं।
3: एक तो ना जी, हम फूड़तानी परोसते हैं उनमें
1: जी,
3: ऐसा कुछ बनाते हैं कि पूरा फैमिली उनका कोई भी सदस्य बैठ के देख सकते।

0: लगता है उनको।
1: और एक प्रेरणा मिलती है कि हमें मिलके रहना चाहिए।
0: हमारे व्लॉग का जी सबसे मेन मकसद यही है कि अगर ऐसे सब संयुक्त परिवार में रहें तो बड़े से बड़ी समस्या को भी हम पार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, अब कठिन समय की बात आपने की सीमा जी, देखिए पूरा परिवार साथ हो गया। अच्छा ये बताइए, जब आपने अपना पहला कंटेंट बनाया वो कैसे शुरू किया, क्या विचार आपके मन में आया और पहला कंटेंट किस बारे में था आपका?
2: पहला कंटेंट यही था कि मैं जैसे एक गिल्ट सा फील होता था कि इतनी पढ़ाई की हम कुछ भी नहीं कर पाए। तब मैं वीडियो बनाने लगी जोक्स टेलर की, तो वो मेरे जोक्स बहुत पसंद किए लोगों ने। और उस टाइम पे लेडीज कम आती थी, बहुत कम आती थी यूट्यूब पे, आजकल तो आने लगी। और उसे डर बना रहता था सोशल मीडिया पे कोई कमेंट गलत कर देगा। देखो भाई, कमेंट गलत तभी करते हैं लोग जब आप कुछ गंदगी परोसोगे। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। मैं सभी बहनों को यही कह रही हूँ, अगर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए ना, तो आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। और अगर आपने ये ठान लिया है तो कुछ भी आप कर सकते हो। और ये भी नहीं है कि बस हमें प्रसिद्ध हो गए, नहीं भाई, इसमें कमाई भी होती है अगर मेहनत करके लगे रहोगे तो।
1: जी
2: बिल्कुल,
1: एक रेगुलरिटी ये मांगता है कि आपको इतने वीडियोस डालने हैं।
2: बिल्कुल,
1: रेगुलर
2: डालना पड़ेगा आपको, बने रहना पड़ेगा। रेगुलरिटी के बिना कुछ नहीं होता।
1: बिल्कुल। अच्छा पूनम जी, आपसे जानते हैं कि शुरुआती दिनों में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे जब आपने ये शुरू किया, एकदम से तो कोई हिट नहीं हो जाता, थोड़ा सा संघर्ष चलता है उसमें, तो ये बताइए कि किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई तब?
0: चुनौतियां तो जी देखो, ऐसी कोई मेनली तो चुनौती नहीं आई हमारे सामने, क्योंकि हमारे जो बेटा है ना दोनों
1: जी,
0: वो अच्छे से पढ़े लिखे, वो सारी चीजें अच्छे से संभाल लेते थे।
1: अच्छा, वो आपकी मदद?
0: हाँ हाँ, फुल हमारे दोनों बेटों ने हमारी फुल मदद की।
1: आपके बेटों के नाम जानना?
0: नितिन जतिन जी, जब बड़े वाला जतिन है, छोटे वाला नितिन है।
1: अच्छा,
0: बल्कि एक बार सीमा का चैनल हैक हो गया था, तब भी नितिन जतिन ने उसको वापिस लाने के लिए पूरा जोर लगाया।
2: कठिनाइयां तो आती हैं, पर अगर हम कठिनाइयों को पार करके लगे रहेंगे ना, मेरे परिवार ने सब ने यही कहा, कोई बात नहीं, एक दिन अच्छा आएगा, आप आगे भी बढ़ोगे, आगे भी बढ़ोगे।
1: और आप अभी तो बहुत आगे आ गए हैं, और आगे भी मंजिल है कि अब दूर तक जाना है।
2: हाँ जी,
1: अब बहुत सारी प्रसिद्धि आपको मिले, हमारी कामना है। अच्छा ये बताइए कि आपका पहला कौन सा वीडियो या पोस्ट सबसे ज्यादा हिट हुआ, ज्यादा देखा गया और लोगों ने उस पर कमेंट्स किए?
2: टाइम टाइम पे कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लोगों का टेस्ट बदलता रहता है। तो मैंने जोक की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने अपने पुराने समय की बातें बताई थी कि पहले की बहुएं तैयार होकर जाया करती, कुएं में पानी भरने जाया करती, एक दूसरे के सूट की बड़ाई कर दिया करती। पर आजकल बड़ाई नहीं करेंगी, कि और ना वो पानी लेने जाने का आजकल सिस्टम, वो नए सूट पहन के बेचारी स्टेटस पर लगा लेंगी, पर उनको देख लेंगी, कोई स्टेटस पर ये नहीं कहेगी कि बहुत बढ़िया सूट है, कहाँ से लिया। हाँ, ये वाली वीडियो मेरी चली थी।
1: अच्छा,
2: और इसमें 4-5 लाख के अराउंड व्यूज आए थे।
1: अच्छा।
2: हाँ, और फिर मैं जैसे ये फूड की डालने लगी, खाने की, तब हमारी जो देसी फूड हो है, हमारे जो हरियाणा के पूड़े वाली वीडियो हमारी बहुत गई थी,
0: मीठे पूड़े वाली,
2: उसमें हाँ उसमें 20-25 लाख व्यूज आए थे, लोगों ने बहुत पसंद करे।
1: अच्छा जी, पूनम जी रसोई की तो रानी आप हैं, बताइए वो पूड़े कैसे बनाए थे आपने?
0: कैसे बनाए थे? हमारे हरियाणा की पूड़े और गुलगुले थे जी, मेन डिश है
1: जी। बिल्कुल है, बताइए वो पूड़े आपने कैसे बनाए थे, हर एक के बनाने का ढंग अलग होता है। हमारी
0: बहनें
1: सुन रही होंगी तो जानना
0: चाहेंगी। हमने अपनी मम्मी से, दादी से, मेरी सास से जैसे बनाना सीखा था वैसे ही बनाया था जी। पहले थोड़ी देर पहले गुड़ को भिगो के रख दिया पानी में, फिर आटा छान लिया, आटे को मीठे पानी में भिगो दिया
1: जी,
0: उसमें थोड़ा सौंफ, इलायची पाउडर, ये वो सब कुछ डाल के सॉफ्ट सा वो बना लिया डो, और फिर बना दिया। और मैं
1: अच्छा, सॉफ्ट होना चाहिए डो, हार्ड नहीं होना चाहिए?
0: नहीं जी, हार्ड तो थोड़ा सा गाढ़ा
2: बेटर होना चाहिए, बेटर उसका।
0: अच्छा, गाढ़ा तो गुलगुले के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सा पतला सा वो पूड़े के लिए होता है।
1: अच्छा, एक मक्खन निकालने की विधि भी आपकी बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा मक्खन आप निकालती है। कई बार तो हमारा मक्खन अच्छा नहीं निकलता।
0: नहीं नहीं, मेरा तो जी बिल्कुल बहुत अच्छा।
1: ये भी बता दीजिए, सभी बहनों को नहीं आता मक्खन निकालना? हमारी बात करें, हमें नहीं आता है, बताइए।
0: मैं मलाई से मक्खन बनाती हूँ जी।
1: अच्छा, मलाई से?
0: मलाई से बनाती
1: जी, मलाई
0: मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ, दो दिन की मलाई हो जाती है तो ऑलमोस्ट मेरा एक डोंगा भर जाता है
1: जी।
0: फिर मैं उस मलाई को थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें 1.5-2 गिलास दूध डाल के उसमें थोड़ा सा जामुन लगा देती हूँ, जिसको अपनी देशी भाषा में वैसे तो जामुन बोलते हैं, हमारा खट्टा बोलते हैं जिसको, वो लगा देती हूँ। फिर सुबह उसमें थोड़ा सा मौसम के अकॉर्डिंग पानी डालती हूँ, अगर सर्दियाँ हैं तो नॉर्मल पानी डाल दूंगी, अगर गर्मियाँ हैं तो बर्फ का पानी डाल दूंगी।
1: अच्छा, उससे वो उभर के आता है।
0: फिर वो उसमें रई लगा दूंगी, अगले 3 से 4 मिनट में इतना टाइट टाइट मक्खन निकलेगा।
1: अब बड़ी तन्मयता से मक्खन निकाल रही होती है उसकी मक्खन की बॉल्स, और मैम

0: उसकी तारीफ कर रही होती है। आप लोगों का बहुत
1: हम
0: अच्छा
1: बहनों का यही है, मैं काम करती हूँ, ये मेरे पीछे कैमरा लेके फिरती है।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बॉन्डिंग भी आपकी बहुत अच्छी, ईश्वर इसको बना के रखे। अच्छा ये बताइए मैम कि कंटेंट जो आप बनाती हैं उसके लिए आइडियाज आपको कहाँ से मिलते हैं?
1: देखो जी जब बनाना शुरू कर देते हैं ना तो आइडियाज तो खुद भी खुद निकल के आते रहते हैं।
0: बिल्कुल नहीं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए,
1: फॉर एग्जाम्पल एक बार हमारी जो पूरे वाली वायरल होगी ना,
0: हाँ जी,
1: तो फिर हमने ना मतलब खाने वाली को ही वैसे वो बना ले कि हम क्यों ना सीमा फूड वाली ही पे ज्यादा जोर दे।
0: वो आपकी रसोई लेकिन बीच बीच में चालू रहती है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन सीमा बीच बीच में मोटिवेशनल जो वीडियोज है वो भी डालती रहती है जो हर किसी के दिल को छुके जाती है, किसी भी एज का हो।
0: जी चलिए अगला प्रश्न आपके साथ करते हैं। एक वीडियो जो आप बनाती हैं मैम, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या आप स्वयं बनाती हैं या जैसा कि आपने कहा बच्चे मदद करते हैं?
2: जी बताते हैं,
0: बताइए
2: जी। जैसे ये मोटिवेशनल या कोई भी स्पीच वाली वीडियो होती है, वो मैं अपने जैसे लाइटिंग वाले एरिया में अकेले में बैठ के सोचती हूँ, जो भी विचार मेरे मन में आता है या कहीं से मैंने कोई बात सुन ली तो मैं उसको लिख लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ। फिर उस पे उस मुद्दे पे मैं अपने शब्द अपने पास से बना के
1: अपने भाव जोड़ बोलती हूँ,
2: उसको मैं फोन में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं उसको एडिटिंग भी खुद ही करती हूँ, अपलोड भी खुद ही करती हूँ। और थोड़ा थोड़ा सीखा है मैंने अपने बच्चों से ही, क्योंकि बच्चे तो मेरे हमेशा मेरे पास अवेलेबल होते नहीं, वो तो अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, और मेरी बहन को इतना टाइम नहीं होता, इसको करना होता है सारा काम
0: जी।
2: मैं इसको रिकॉर्ड करती रहती हूँ, जो जो इसकी एक्टिविटी होती है मैं उनको रिकॉर्ड करती हूँ, और जो मेरी वीडियो होती है उनको भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ। फिर मैं रेस्ट टाइम में और आराम से लेट के या बैठ के उनको फोन में ही एडिट करती हूँ, और फिर मैं खुद ही वो भी करती, अपलोड भी करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ये और बताइए कि जब से आप सोशल मीडिया पर आई हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो है नहीं, अब आप स्टार हैं।
2: बिल्कुल,
0: और जाने माने चेहरे,
2: बस आप सबका प्यार है, स्टार तो नहीं है,
0: नहीं आप जाने पहचाने चेहरे हैं, और आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग भी जाने जाते हैं। तो बताइए क्या परिवर्तन आपके जीवन में आया?
2: देखो जी परिवर्तन तो ये पहली बात तो यही है कि वो क्या करा ना अपने हरियाणा में खाली दिमाग वाला शैतान का घर, जब मैं खाली पड़ी रहा करती तो मेरे मन में बुरे बुरे थॉट्स आया करते
0: जी,
2: ठीक है ना मैम। तो फिर मैं वीडियो बनाने लगी तो मैं बिजी रहने लगी तो फिर उस काम में मन भी लगने लग गया, और परिवार का माहौल भी अच्छा रहने लगा। उससे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, खुशी तो उससे रहती है परिवार में,
0: ये एक संतुष्टि है।
2: बिल्कुल,
0: और एक क्रिएशन का भी एक सुख है कि आप सृजन करती हैं,
2: बिल्कुल
0: उसका भी एक सुख अपना अलग ही होता है। अच्छा ये बताइए आजकल जो युवा हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हैं, आप सोशल मीडिया में तो आपको स्टार कहूंगी, सोशल मीडिया स्टार होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं बच्चों पर, जो युवा बच्चे हैं उन पे ये जो सोशल मीडिया है इसका प्रभाव अच्छा पड़ रहा है या गलत है?
2: देखो जी मैम प्रभाव तो हर चीज का, वो कहते हैं ना फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगर सोशल मीडिया का फोन का अगर बच्चे सोच समझ के इस्तेमाल करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिसका हम अपने जीवन में हमारे टाइम में जिन चीजों का हमने अभाव देखा ना, कि एक प्रॉब्लम अगर कोई पढ़ाई के बारे में हो जाती तो अगले दिन स्कूल में ही उसका हम सोल्यूशन कर पाया करते, पर आजकल बच्चे अगर फोन को सही तरीके से यूज करेंगे तो हर समस्या का समाधान हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हाँ अगर भाई गलत तरीके से करोगे तो इसमें बहुत सारी गंदगी भी भरी है, और सही तरीके से करोगे तो इसमें बहुत सारी अच्छाई भी है,
0: इससे आप सीख
2: बिल्कुल
0: सकते हैं।
2: आप इस पे कमाई भी कर सकते हो और इससे अपनी जिंदगी खराब भी कर सकते हो। मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि तुम्हें बहुत अच्छा अवसर मिला है आज के जमाने में, इतनी आपको ये फैसिलिटीज मिल रही है मोबाइल फोन से, इसको आप अपना शिक्षक बनाओ, अपना पथ भ्रष्टक मत बनाओ इसको।
0: बिल्कुल,
2: मैं युवाओं को यही कहना चाह रही हूँ।
0: ये अच्छा संदेश आपने दिया है, सकारात्मक अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदे हैं, अन्यथा इसके नुकसान है। अच्छा प्रसिद्धि मिलने के बाद अब आप फेमस हैं मैम, इसके बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन आए हैं कि आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं घर में, आज तो उसने ये कहा, आज तो ऐसा एक कमेंट आया, क्या किस तरह की बातें आप करते हैं घर में?
2: हाँ वो तो करती हूँ मैम।
0: आपके पति लोग क्या कहते हैं आप लोगों के?
2: हाँ, वो भी बहुत बोलते हैं ऑफिस से आके। हाँ। वो कहते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, हमने आपको वहाँ देखा। हाँ। ये और आस पड़ोस के भी कहते हैं, कमेंट्स भी आती हैं।
0: अच्छा।
2: बोलते भी हैं कि आप कहाँ रहते हो, हमें आपसे मिलना है। प्रसिद्धि पर हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते मैम,
0: ये तो देखिए जरूरी है, लेकिन इसको आप एंजॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल करते हैं,
0: और इस सब का श्रेय आपको
2: बहुत अच्छा लगता है। कोई जब ये कहता है

0: हम आपको जानते हैं, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ या देखती हूँ,
1: आप कितनी अच्छी बनाते हो,
0: आप अच्छे हो, बहुत अच्छे से समझाते हो, अच्छा तो लगता है। मैं
1: जी अच्छा, एक आपका हमारा अपना निजी जीवन होता है, एक आपका सार्वजनिक जीवन है, तो इसमें बैलेंस कैसे आप बना पाते हैं? मान लो घर में ज्यादा व्यस्त है, उस दिन आप फिर वीडियो पोस्ट करने का टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि लाजमी है आपको एक दो या तीन वीडियो दिन में पोस्ट करने, ये बैलेंस कैसे बनाते हैं? कई बार घर इतना ज्यादा समय ले लेता है।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: बताइए।
0: देखो मैम, ये है कि अब हम किसी काम को करने लग गए ना, उसके लिए तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा
1: जी।
0: ये नहीं है कि भाई आज मेरा मन नहीं है, आज नहीं मैं करूंगी, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ वीडियोज में एडवांस में अपने रिकॉर्ड करके रखती हूँ।
1: अच्छा,
0: वो जो डेली व्लॉग्स वाली है वो भी एक्टिविटीज मैं अपनी रिकॉर्ड करके पहले से ही रखती हूँ। तो फिर हम क्या करते हैं कि पहले से मैं रिकॉर्डेड जो वीडियो होती है उन्हीं को एडिट करके मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हमें हमारे चाहने वाले हमारी वीडियोस का वेट करते हैं
1: जी।
0: उनको हम ये नहीं चाहते कि आज इनका व्लॉग नहीं आया या वीडियो नहीं आई। और मैं अपने व्यूवर्स से जुड़ी रहती हूँ, बीच बीच में लाइव आ जाती हूँ मैं, पे हम लाइव करते हैं। देखो अपनी पर्सनल लाइफ को तो हम सबके सामने तो बता नहीं सकते
1: जी।
0: तो कई बहनें कहती हैं कि आप कहाँ रहते हो, हमें आपसे मिलना है, तो मैं बस उसके लिए यही कहती हूँ कि बहन आप लाइव में बात कर लो, मेरे साथ मैसेज करके बात कर लो, इतनी तो हमें भी अपनी प्राइवेसी रखनी पड़ेगी
1: जी, आपसे समय लेने के लिए हमें भी ऐसा ही करना पड़ा। अच्छा, जैसे आप इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं कि वो
0: बिल्कुल
1: प्रभाव डालता है, तो
0: बिल्कुल
1: आपके माध्यम से बहुत सारे संदेश लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं, तो किस किस तरह के संदेश? देखिए, जैसे हम बिजली बचाने की बात करते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पानी बचाने की बात करते हैं, ईंधन बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, इस तरह की भी वीडियोज मैडम आप बनाती हैं, क्योंकि लोगों पर आपका इम्पैक्ट जाता है,
0: बिल्कुल
1: तो आप
0: बिल्कुल
1: लोगों को प्रेरित कर सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: मैंने पहले डाली हैं कई वीडियो ऐसी भी कि पानी को बचाओ,
1: जी।
0: पेड़ लगाओ, कई वीडियो बनाई हैं मैंने, डाली भी हैं, पर हम सबका सहयोग होगा ना तभी हम कुछ कर सकते हैं। कम से कम ये देखो जो हमारे पंच तत्व हैं उनमें से हम एक को तो नष्ट होने से बचाएं, जैसे हमारी गृहणियां हैं हम, और भी नहीं तो पानी का बचाव तो हम कर सकते हैं सारे।
1: बिजली है,
0: हाँ
1: ईंधन
0: बिजली,
1: है,
0: पानी और ईंधन,
1: हाँ
0: इन
1: जी
0: इनका तो हम कर ही सकते हैं
1: जी जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल
0: बिल्कुल
1: एक
0: बिल्कुल
1: बहन घर पर करती है,
0: बिल्कुल
1: तो अगर वो उनको थोड़ी
2: एक
1: सी
2: लिमिट
1: लिमिट में
2: में
1: यूज
0: बिल्कुल
1: करेंगी, तो आगे आपकी बेटी है घर में, बच्चे हैं,
0: बिल्कुल
1: वो आपको
0: बिल्कुल
1: फॉलो करते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: हाँ
1: तो एक
0: हाँ
1: अच्छा संदेश जाता है उससे।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि जो बच्चे या जो महिलाएं इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं, तो क्या सलाह आप उनको देंगी और क्या करें वो शुरुआत में? पूनम जी से पूछ लेते हैं, पूनम जी कम बोल रही हैं जी, बताइए।
2: देखो जी, इतना भी मुश्किल नहीं है कि
1: हाँ
2: काम करते करते ये वो इस वाले सोशल मीडिया से जुड़ के कुछ करना, इतना भी मुश्किल नहीं है।
1: जी
2: अगर किसी हम जैसी बहन को कुछ थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में मुश्किल होती है,
1: जी
2: तो आजकल अपने बच्चे से हेल्प ले लो।
1: बिल्कुल।
2: हाँ जी
3: बहनों, सोशल मीडिया के लोकप्रिय चेहरों के अंतर्गत मुलाकात हुई श्रीमती सीमा वशिष्ठ और पूनम वशिष्ठ से, इनसे बातचीत कर रही थी अर्चना मिश्र। अगले कार्यक्रम तक बहनों हमें दीजिए विदा,
1: नमस्कार। बहनें सुन रही थी घर आंगन कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
4: मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
5: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
4: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 135वें एपिसोड में भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और योग की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समुद्र से लेकर आसमान तक देश की सुरक्षा लगातार मजबूत हो रही है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने

0: स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रह के नौसेना में शामिल होने तथा भारत में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एयरोस्पेस क्षेत्र को तेजी मिल रही है, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे 40 विमान बनाए जाएंगे जिससे एमएसएमई और एयरोस्पेस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्थिति के बारे में भी बात की।
1: मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेटकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस स्कीम के तहत दुखद मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए तक का बीमा दिया जाता है और इसके लिए सालाना सिर्फ 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है। अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं और लगभग 11,00,000 परिवारों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन योजनाओं के बारे में अपने परिवारों के साथ चर्चा करें। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश में युवा खिलाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड फुटसल लीग की चर्चा की। नागालैंड बेबी लीग 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। इस लीग के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है, जिसमें हर टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये मैच छोटे आकार के मैदान पर खेला जाता है। श्री मोदी ने कहा कि नागालैंड महिला फुटसल लीग से राज्य की कई महिलाओं की प्रतिभा देखने का अवसर मिला है।
1: आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं।
0: इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में भारत को 102 स्वर्ण सहित कुल 114 पदक मिले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

ये आपने सुना आहुति फिल्म का गीत, किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, आज पत्रों पर आधारित आपके अनुरोध पर लेकर हम हाजिर हैं। तो हमारे जिन श्रोताओं ने इस फिल्म का ये गाना सुनना चाहा था वो हैं रोहतक।

रवि पवन मंगू रेणु बलजीत महेंद्र रावत जाखूद से शंभुदयाल खटक बिमला अमरजीत सुंदरलाल योगेश दीपक पूजा खटक शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर भगवान चंद्राकर धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे माया संदेश प्रज्वल अनुत शेखर सोनू ने और बाला खाड़े। आप सभी की पसंद पर आंचल फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी का गीत संगीत आर

किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया आंचल फिल्म का ये गीत था। अगला गीत आप सभी की पसंद का है। आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी ओम सुरलकर, रोहतक से रमेश शर्मा, वीरेंद्र राठी, जगदीश सहगल, कविता मलिक, दिलबाग सैनी, विनोद कपूर, रमेश चंद्र, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य बाठे, लुधियाना से पप्पू चोपड़ा, कविता सोमदत्त चोपड़ा, सुजानगढ़ टाड़ा से पिंकी साक्षी गुनीता, हिसार से राजेंद्र सैनी राजेश सैनी, बड़वाहा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, कुरुक्षेत्र से वीना ढींगरा, राजश्री अनुश्री, फुलवारी शरीफ पटना से अविनाश चंद्र, ज्योति जाह्नवी पीहू, वाकोडी से उत्तम जमधाड़े, स्वराज स्वरीत पोपलवाड़, संघर्षा संविधान, हिंगोली से शाहजी बोड़के, हदगांव आष्टी से सुधाकर कामले, संदीप कामले, पुरशा देगांव से सदाशिव थोरात, और ये पत्र है मलोट पंजाब से रमेश चाचोरिया, गीता गगनदीप, आरजू चाचोरिया का, दीवालग्राम से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता छोटू, रोशनी अजय, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, चौधरीवा से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, विवेक प्रयाग, प्रियांशी, अकोट महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, प्रमोद धनभर, किशोर नारे, रघुनाथ नारे शिंगेकर, जगाधरी से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा ईशानी, करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत मनमीत मनविंदर, निमनाबाद जींद से जसबीर इल्मावादी, गुरप्रीत लवप्रीत, कर्मजीत जितेंद्र, आनंद सिटी गुजरात से आशाबेन पटेल, विशाखा पटेल, राजकोट से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा जीशान लखाणी, कुदोपली उड़ीसा से गिरधारीलाल विश्वकर्मा, सरस्वती विश्वकर्मा विहंगम, और चौधरीवा से मांगेराम सतोड़, सुनील शुभम, यश और विनोद की चिट्ठी है। आप सभी ने सुनना चाहा है आरोप फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें आप सुनेंगे। माया गोविंद के बोल हैं, संगीत है भूपेन हजारिका का। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गाया आरोप फिल्म का गीत आपने सुना। माया गोविंद ने इस गीत को रचा था, संगीतबद्ध किया था भूपेन हजारिका ने। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: घर फिल्म का गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ सुना। गुलजार के बोल थे, संगीत था खय्याम का, और पसंद थे आप सभी की। आप हैं अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारिणी, सूरज ज्योति, रियांश, सुजला ठाकुर, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, मोरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता, शिल्पा, आकाश, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत निशु, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय, सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान मालाकार, जाभरून अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज और साध्वी जोशी, परभणी से गणेश हारगांवकर, खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ नेगी, गौरव मीठी और कुहू, नथाना से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता, कासगंज से आबाद खान, नबील, आरिफा, इल्मा, असलम सैफी, बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान, राजनगर मधुबनी से राजू गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, छपरा दलदली बाजार से संजय, संजीत गुप्ता, सर्वजीत, सुधांशु, सीतामढ़ी से प्रभात गुप्ता, अरविंद, मंटू और निक्की गुप्ता।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में स्वर्ग नर्क फिल्म का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था राजेश रोशन का। पसंद आप सभी की। आप हैं चकला बाजार सामाना शहर पटियाला से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, खंडवा से यथार्थ खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश, अंजलि, संदीप माधुरी, पिंटू, जयश्री, लोहगढ़ फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप सिंह, गुरलाल, अविराज सिंह, गुरमान।

गुरनूर सिंह, महसूल सीतामढ़ी से तलत जहनाज, फरत जहनाज, रूही वसीम अकरम, नदीम शमीम अमन, डवाली से जेके बकोलिया, सुनीता संजय, मीनू राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित नारंग, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, अजहर हसन, इब्राहिम नाजिया आफिया, चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, मुस्कान कुनाल, और आप हैं खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा तुषार, किशु आनंद जोशी और अभय गुजराती। अगला गीत सुनवाते हैं आपको हमारे इन सुनने वालों की पसंद पर। साथ ही ये भी बता देते हैं कि फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं के नाम आपको बताते हैं, जो चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत प्रवीण, शहनवाज सरफराज, सुहान अरजान, फरदीन अबान अब्बासी, भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, जगदीश गिन्नारे, रेखा विनीता, शेर सिंह गिन्नारे, बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू प्राची वर्मा, लोनी से नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी, प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लुहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया, भिलाई टाउनशिप से अनुश्री पिंकी प्रमीला, रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, नरेंद्र कुमार राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद मखीजा, सविता स्वाति माही, पूजा शरद चुटकी, सुंदरखेड़ महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश नरवाड़े। दो रास्ते फिल्म का गीत आप सभी ने सुनना चाहा है। आवाज लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी का गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दो रास्ते फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ आपने सुना। अगला गीत आप सभी के लिए, आप हैं बलियाली से दर्शनलाल बंसल, सुदेश, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश, तमन्ना बंसल, करूला, मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान, बीड़ से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव पटेल, खेरड़ावाड़ी हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा, हनुमान, सारिका सुरेखा, आरवी बोड़के, सोनम, जलगांव सोमनाथ जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्वनी भूतेकर, औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले, हर्षुल सावंगी, भावसिंहपुरा औरंगाबाद से वैभव, गौरव लोखंडे, वाकुलनी बदनापुर से मेघराज, युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, थनक्ष और आर के साहू, वाकोडी से आप हैं आत्माराम, मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ शर्मा, शाइना निवान शर्मा, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची तन्या, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, कैरों से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता चलोत्रा, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद, गुरशपत, जोजुकला से विनोद प्रजापत, अंकित, प्रिया, तनिषा, वंशु, दीपक, कविता और शकुंतला, सोनू आपके साथ हैं। मटोर कैथल से रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान, आहिल खान, बुच्चो कैथिया से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, सिमरन, दमन, अभिजीत एकम और बारौली जींद से सुरेंद्र सांगवान, अंकित और सचिन सांगवान। आप सभी की पसंद पर जवाब फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

ये जवाब फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें थी। गीत में जून के महीने का और गर्मी का जिक्र था। वाकई अब जून तो विदा लेने को है, लेकिन गर्मी है कि जा नहीं रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं इनकार फिल्म का गीत, जो कि है आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गाना। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत सुनवा रहे हैं। आप हैं सिद्धेश्वर यवतमाल से, पंजाब रामटेके यशोधरा, श्रव्या रामटेके, मंदीचक भागलपुर से दिलीप सोनी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, तासु अर्णव, सत्यमानंद, बोहड़ा गाछी से मुन्ना भगत गुड्डी भगत, जींद से राजेश ढांडा, बुलढाणा से अमोल मानकर शोभा ताई, दीपाली श्लोक कुमार, मोहला से राजकुमार ढोचक, गीता अमन, सानिया सुभाष, खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे बेबी किट्टू, गुवाहाटी से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या, गणेशपुर वाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका। और ये खत मेरठ छावनी के दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय, संदीप मक्कड़, अनिल जैन, दर्शन भाई, करण शक्ति, रिया जया का है। पांडर कवड़ा महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री और बलहार शाह से सूरज लोंढे, प्राची और एकलव्य। आप सभी की पसंद पर इनकार फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

आप सुन रहे थे आपके अनुरोध पर कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। श्रोताओं को बता दें, श्रोता मंच कार्यक्रम का आज शाम 7:30 बजे प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि हम रिले करेंगे क्रिकेट मैच। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार होंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
0: Kolkata mein INS Dhunagiri, INS Sanshodhak aur INS Agra ko Bhartiya नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nanded, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने

0: had been given an opportunity to uphold the ceasefire, but instead launched a one-way attack drone that struck Panama-flagged oil tanker MT Kiku. Iran's foreign ministry, meanwhile, said it had carried out strikes against targets linked to American forces, blaming it as the treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
3: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है।

0: इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के

0: पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें

0: आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे वण भाइयों ने भाइयों अनिल भाई के राम राम। भाइयों मौसम का जिक्र आओ तो भी दो दिन तीन दिन तो बहुत एक नू कह सकते हैं भाई, बफर जो गर्मी है, खूब गर्मी का जो एक कहर है वो चल रहा है। और देखो भाई नू कह भी करें कि बोले भी गर्मी में ना गर्मी लग गए गर्म पना के होश है, और बोले भी सर्दी में ना सर्दी लग गए सर्द पना के होश है, और बोले

कई बात तब मर्द मुकर्जी अब लगे मर्द बना के वो है, यानी कि भाई मौसम के हिसाब से जो है भाई गर्मी में गर्मी, बाकी कुछ साल सौर्य है प्राकृतिक जो है संतुलन है भाई गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सर्दी की जो सीमा है एक समय है वो कम होता जा रहा है, और इसी वजह से हम देखा भाई कई तरह की जो है प्राकृतिक बिजली पड़ना, बेमौसम बारिश, कई दिनों तो पश्चिमी विक्षोभ का बहुत तो लंबा चौड़ा असर चल रहा था, कई जगह अच्छी फायदे भी हुए हैं, बिजाई भी भाई यहाँ की हुई है या फिर भाई पानी की भी साथ दी है, लेकिन फिलहाल जो मौसम है बहुत तापमान में भाई बढ़ोतरी है, उमस है, गर्मी है, और पूरे मौके रहे हैं कि इस मौसम में इस स्वास्थ्य हमारे ख़राब होंगे, खेत के हर काम जो भी काम करें नुड़ाई का गुड़ाई का भाई कम से कम भी 10-11 बजे तक हम 11:30 तक भी 12 तक भी खूब भाई काम कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा जो समय है मौसम के हिसाब से अपना सवेरे वक्त जोटा मार लें, शाम सवेरी कर लें, और खेतों में अपना जो पीने का पानी का प्रबंध है भाई ज़्यादा तो देखो भाई कोई बरमा हमने लगा रखा है रेता वो है तो उसने थोड़ा बहुत छान ले, या फिर जब वो पानी बैठ जाए रेत बैठ जाए नितर जाए पानी वो पानी पीवें, साफ सुथरा जो मटका है उसको भी अपने चारों ओर कोई बोरी बारी लपेट लें ठंड, ताकि उसकी तासीर ठंडी रहे, और एकदम पसीने में किसी भी ढाल का कोई शीतल पेय पदार्थ हो चाहे पे ठंडा पानी हो वो हम ना पीवें, जब शरीर का तापमान ठीक हो जाए अपना हम देखा करते कि जो हमारे बुजुर्ग थे कोई भी काम करने से पहले जी रोटी खानी है पानी पीना है थोड़ी सी देर पेड़ के नीचे बैठ के आराम करके और फिर अपना माथे का पानी लगा के और थोड़ा सा तापमान ठीक जब शरीर का हो जाता फिर अपना खाना पीना जो भी अपना भाई पानी पात पिया करते, तो इन बातों का हमने ज़रूर ध्यान रखना। और भाई नींबू अपने खेतों भाई के पेड़ भी लगा रखे हैं लागम ही है, नहीं तो अपने घर से भी भाई ले जा सकें दुकान से खरीद के 5-4 नींबू अपने ले जाएँ, थोड़ा बहुत नमक ले जाएँ, हल्की थोड़ी बहुत चीनी ले जाएँ, नमक चीनी पानी का जो घोल है वो ज़रूर लेते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, कोई भी सी समस्या हमने दिखे जिम में चलाव है उल्टी हैं जस्त हैं कोई चक्कर आओ है तो नज़दीकी जो भी अपने भाई चिकित्सक हैं डॉक्टर साहब हैं स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे बन रहे हैं जिला स्तर पर भी अपना भाई नागरिक अस्पताल है उन्हें ज़रूर भी भाई अपने दिखावें। बाकी भाई देखो आज हम बात करा खेत कल्याण कार्यक्रम में जिक्र हमारे सारी रबी की फसलों के खरीफ की चारा वाली और फल फूल सब्जी सब चल रहे हैं, लेकिन हम बात करा कि भाई जो ज़मीन की तासीर है एक धरती माता की जो एक उर्वरा शक्ति है वह घटती जा रही है, नाजा के स्वादा में जो कमी आ रही है और बुजुर्ग कहे हैं भाई नाजा में कणा नहीं रही, तो इस बारे में आज भाई अपना चर्चा करेंगे कि धरती माता में जो जीवांश की मात्रा है जो जीवाणु खाद हैं वो किस तरह दें और किस तरह से जो हमारा खाना है सात्विक हो, हमारी जो थाली है जिसमें अन्न है सब्जी है रोटी है फ्रूट्स हैं उसमें जहर ना हो और वो भी हमारा जो फ़ायदा करना चाहिए वो शरीर में एक फ़ायदा करें, और लेकिन उससे पहले भाई भैया ने एक रागनी सुनवा दे हैं, गायक कलाकार हैं राकेश किलोया और उनके साथ।

तो भैया आपने सुनी रागिनी गायक कलाकार थे राकेश किलोया और उनके साथी, और रागिनी भाई जो एक अपना बैल है बड़द है उसकी बताती कि भाई लास्ट टाइम में किस तरह से जब नाथ भाई अपना काट दे हैं और या फिर भाई किसी ने खरीद फरोख्त कर दे बेचते हैं, तो देखो भाई जीव जंतु हैं जितने भी हमारे, और जो हमारा एक संस्कृति है, हमारा एक जो कल्चर है, जो एक सामाजिक ताना बाना है भी, अपना पशुओं के प्रति भी प्रेम, जीव के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति भी प्रेम रहा है बुजुर्ग का, जब अपना भाई दाने दूने हाथ की कटाई लगभग चालिया कर दी, बोले अभी जनावर खातर छोड़ दो, डाबे तालाब पानी गालना, जो जेठ का भी जो चल रहे हैं, बड़ी तपिस का मौसम है इस टाइम पे, बहुत सारे से पक्षी हैं, टटीरी है भाई, जमीन मंडे दे है, जमीन में अपना चालना है, जमीन में जो पानी है वो पीवे हैं, कुछ पक्षी से भी हैं जो अपना ठेकरा ठाकरा भर के धर दे पेड़ पे या कोई भी लटका दे उसमें दे पीले हैं, तो भाई थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़े, जीव जंतु के साथ जुड़े, और जब तक भाई प्रकृति है मैं जितना हमारा हिस्सा है उससे भी ज़्यादा जो जीव जंतु हैं उनका इसमें हिस्सा है। और देखो भाई जिक्र हमारा चल रहा था कि जो धरती माता है उसकी एक उर्वरा जो शक्ति है और जो उसकी एक ताकत है वह घटती जा रही है, बहुत सारी हमारी सी वनस्पति खत्म होगी, बहुत सारे हमारे जो पुराने दरखत थे हम देखा भाई गौरव्या में वह पड़ गए बहुत सालों साल पुराने, और जो जाड़ के पेड़ हैं वो तो बुजुर्ग ये कहेंगे सतयुग के टाइम के हैं कि किसी ने देखे कौन भी किसने लगाए अपने आप सामने हैं, बुजुर्गों के बुजुर्ग पड़दादे सड़दादे सब कहते आए भाई ये बहुत पुराने हैं, तो उसके लिए देखो जाड़ के पीड़ लागनी बंद होगी, ऊँ भी पड़न लग गए ना उनका सारा माटी लान दे, और जो पुराने दरखत थे वो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, एक पेड़ अगर हैं तो भाई ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, ज़मीन का कटाव न रोकेंगे, बारिश समय पाओगी, और भाई ये तो एक खेतों का सौंदर्य है वो हमारे पेड़ पौधे हैं, और जो एक ताना बाना है हमारी संस्कृति का खेती बाड़ी का, भाई खेत में जब हम जाया करते अपना आप हर साल बाला टिंड सी भाई अपना काचर तो मतीरी तो सब जमया कर दे, लेकिन हमने अंधाधुंध जो दोहन कराया है, अंधाधुंध रासायनिक खाद डाली है, गहन खेती करी है, सघन खेती करी है, यानी कभी एक फसल हम काटन लाग रहे हैं और दूसरी फसल का बीज लेके दर दे हैं, बीच में कोई उसाण नहीं, इसी तरह भाई अपने लोभ में जो नीचे मीठे पानी थे खूब खिंचाई कर करके दुआई कर करके हमने भी उनकी सौर खारिया में बदल दी, और ज़मीन की भौतिक दशा है वह खराब होगी। और जो हमारे जीव जंतुओं की अगर बात करा भाई मोर रहे तितर रहे बटेर रहे जितने भी जीव जंतु थे, कितनी गौरैया चिड़िया खूब अपना बैठ का माल ने बनाया करती रही, इन दिनों में तो मान के चलो ची ची ची ची ची ची ची ची कदे भाई नीचे अंडा पड़ गया कोई बच्चा पड़ गया, बड़ा एक ग्रामीण जीवन हुआ करता, और जो ग्रामीण जीवन हमारा पुराना था आज हम देखा वो पोस्टर में रह गया, जो दीवार पर फिल्म है उनमें रह गया, किधे गांव बंदरी है, किधे बकरी खड़ी है, किधे पेड़ पौधा है, और यो जो एक ताना बाना था जो हमने देखा है खेतों में जो एक हमारा जीवन था पेड़ के नीचे बैठना और भारी भारी हमारे दरखत उनके नाम फलाना का पेड़ दकड़ा का पेड़, वो सारा जो सामाजिक परिवेश था सामाजिक ताना बाना था हमने ख़त्म कर दिया, जिसके चलते जिसके जो दुष्परिणाम है भाई देखो कितनी सारी बीमारी आ गई, किससे भी डॉक्टर का कोई बीपी मापन का यंत्र नहीं था, कोई शुगर नापन का नहीं था, किससे कोई त्वचा का रोग या फिर भाई किसी भी तरह का कोई सांस फूलना, पेट की समस्या आज हम देखेंगे युवा साथी हैं हमारे तोंद की जो समस्या है पेट की समस्या बहुत हो रही है, बुजुर्गों के इसे काम चीवर के खिंचाए खिंचे खिंचाए बिल्कुल सिपाही वर्गे एकदम से स्टिक, और भाई 70 साल की उम्र में भी अड़जोड़ा करते, उसका कारण था कि वो भी जो प्रकृति है उसके साथ जुड़ रहे थे, जैविक जो खाद थी उनका प्रयोग कराया करते, और भाई जैविक खाद जो है वो देखो हम किस तरह कर सके हैं भाई, पहले तो जो जीव जंतुओं का अवशेष जिसे गोबर है मूत्र है वो भी अपना एक भौतिक दशा ज़मीन की सुधारेंगे, हरी खाद हैं उन अपने

भाई फसल में खाद के तौर पर ले सकते हैं ज़मीन में, कंपोस्ट की जो खाद है, जिस तरह के भी रसोई में अपना जो भी कचरा है या फिर अपना गला सड़ा जो गोबर है कुछ भी है, उससे वर्मी कंपोस्ट जो कैचवे की खाद हम बनाओ हैं, यानी कि कोई भी जो वेस्टेज है वो भी हमारे की राख तक की बात करा या फिर पेड़ के पत्तियाँ की हम बात करा या फिर हमने बाजरे की सिरटी चूंड दी वो भी हम खेत में बुआ दें हाँ उसकी हम बात करा, तो सब एक खाद का रूप ले ले हैं और जीवांश की मात्रा बढ़ाओ हैं जो जीवाणु खाता में शामिल हों। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं अभी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सार का जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है, जड़ राइजोबियम के टिक्के हैं, एजेक्टोबैक्टर के टिक्के हैं, कल्चर जो टिक्के हैं दलहनी फसलों के अलग से हैं, दूसरी जो हमारी सामान्य फसल है उनके अलग से हैं, जो भाई हमारी फसल हम फायदा करें हैं इनका के अभी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएंगे, जैविक खाद जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा घट रही है उसने ये बढ़ाएंगे, फसल उत्पादन इसमें बढ़ेगा, पौधा में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह इसमें बढ़ेगी, पर्यावरण इसमें संरक्षण रहेगा। और भाई इसका बिल्कुल आसान सा तरीका वर्मी कंपोस्ट का हमने जिक्र किया, कैंचवे खाद पे कर्म का कर्म धर्म का धर्म, बिल्कुल भाई अपना इसमें व्यापारिक तौर पे भी इस्तेमाल कर सके हैं, एक एक किलो की आधा आधा किलो की जो पैकिंग है जो किचन गार्डनिंग का करें हैं अपने शहरा में छोटे छोटे जो पौधे अपने छत्ता पे जो गैलरी हम लगा रखे हैं खूब उनमें बिकेगी, कैंचवे भी इसमें बढ़ेंगे वह बिकेंगी और अपने खेत खातर अपनी फसलों खातर भी सात्विक जो खाद है वो इसमें तैयार होगी। बाकी भाई इसमें जिक्र और भी करेंगे, एक रागनी और भजन सुनवा दें गायक कलाकार एक बार फिर राकेश किलोजार उनके साथ थी।

तो वीरागनी आपने सुनी गायक कलाकार थे राकेश खिलोया और उनके साथ थे, जिक्र हमारा चल रहा था कि भाई जो भी हम खेती कर रहे हैं और जो भी ज़मीन में कटौती आ रही है, जीवांश की जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा कमी जो आ रही है उसके बारे में, और जो हमारे खान पान है जो बदल गए, और भाई जो भूमिगत जल स्तर की भी हम बात करें तो भी कितने भी गम है, कुछ छिद्दा है, कोई बिरला ऐसा है भाई, कितने गंगा माई है, कितने जमुना माई है, कितने उसके सारे कोई बर्मा कोई अच्छी है, बाकी तो आम तौर पे अपने जो खांड हैं, दाने हैं या फिर रसबाई हैं उनका आसपास भी जो पीने के पानी है वो बढ़िया नहीं रही, पीएच मान भी उनका ज़्यादा हो गया, और एक जो पानी का स्वाद था जो हम जेब पर बाल्टी धर के और भाई आधा कूड़ी में लकड़ी जानदा आधा अपने खड़ खड़ पी जाते और कोई अफारा नहीं, कोई मतलब पेट ईसा हो जाता, बहुत खूब बफर पानी पिया करते और बड़ा एक साथ भी था, वो सारी चीज़ इन चीज़ों से जुड़ रही है। मानस की उम्र की बात करा वो घट गई, जो 100-100 साल के हमारे बुजुर्ग थे हम देखा करते, जब मानो बेजुरी पड़ जाती दिखना बंद हो जाए, लेकिन भीतर का जो कणा था एक उनकी जो माथे की एक चमक थी, पहले 70-80 साल के बुजुर्ग भी थे तो पोंछा पकड़ देने छोड़ा नहीं करते, और आज कोई भी आबा है कांति है या फिर भी खेत में जाना है मोटरसाइकिल है कोई ट्रैक्टर है चले गए, ना तो अपने भाई बाट में खड़े रहेंगे, सब कुछ भाई एक एक मण तो ऊपर डेढ़ डेढ़ मण जो बोझ है सिर पर लाया करते और खूब आत आसानी काटा करते, सारा एक जो हमारे पशुधन की अगर बात करा दूध की जो उसकी गुणवत्ता थी अपने धार लिया करते, जब हम धार काटा करते जी गौवंश की बात करा भैंस की बात करा खूब अपना पदाड़े मार दे अपने छोटे काटू बछड़ू अपनी मर्जी का खाना मर्जी का पीना, कोई फिरन की समस्या कोई फूल की कोई ओछी बहन की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुआ करती, तो भाई इन बातों ने हम देखें और जाने फिर हम दोबारा से जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ जुड़े, और इसके फायदे वो भी बहुत हैं, नो कौन भाई इसमें कोई घाटा सौदा है, एक तो अपना घर नहीं सारा सौदा है, दूसरी बात इसमें यह है कि जो इसमें लागत कम लगेगी, दूसरा

तीसरा इसका जो बाज़ार भाव है वो अपना बढ़िया मिले। कुछ भाई से हैं जो अपना एंड्रॉयड फ़ोन रखे हैं, अपने खेत में रोज़मर्रा का जो काम है वो भाई दिखाऊं, बोले अभी आज हमने केचुए खाद बनाई है, आज हमारे पौधे इतने बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल सात्विक हैं, जो उन पर छिड़काव करें वो भी नीम पा आधारित जो छिड़काव हैं, स्प्रे हैं, निम्बिस्टीन है, चूक है, और फिर भाई उन्हें देखें। और खूब दूसरे गाँव आता है, शहर आता है, उसका गामा आगे पूछ, बोले भाई कम खाद का अनाज किसका है और बढ़िया जो फ्रूट्स हैं, सब्जी हैं, वेजिटेबल है, किसका बढ़िया है भाई, कोई किसने भाई अपने प्राकृतिक रूप से जो काम सारा ताना बाना बना रखा है, तो उसमें देखो बाज़ार भाव भी हमने बढ़िया मिले हैं और हमारा खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहे है। और भाई फिर नुका अगर भाई जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर कराया करे, और प्रकृति भी हमारी ठीक ठाक इसमें रहेगी, और जो हमारे हम बात करें कि भाई जो स्वास्थ्य दिन भर बिगड़ता जा रहा है वो भी शुद्ध रहेगा। और एक दूसरे ने देख के नुका अगर बोला खरबूज ने देख के बोला भाई खरबूजा रंग मतलब है, तो एक दूसरे ने देख के और फिर भाई अपना ये बात आगे बढ़ेंगी, और दोबारा से जो एक कैस के भी अपना हरियाणा में भाई जो सात्विक खेती है, जहर मुक्त जो हमारा एक भोजन है वो भाई दोबारा से हमने खाने मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आमदनी हमारी इसमें अच्छी रहेगी। तो इन सब बातें भाई ध्यान और ध्यान घड़ी का भी वही से एक साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो चलेंगे। सारे बाण भैया ने राम राम।

आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

किसान ठीक ठीक भाई, किसान बहनों ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कृषि जगत ठीक, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाइया ने अनिल भाई की राम राम। ठीक ठीक, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाइयों ने भाई अनिल भाई के राम राम। भाई मौसम की बात करा तो भाई फिलहाल खाकड़ सा चौपाल थे, बाहर की बात करा मौसम में है हल्की सी बादलवाई है, गर्मी है, तपिस है, दिन में भी खूब तेज धूप थी और बढ़िया एक अच्छी गर्मी वाला भाई आज दिन रहा। और बाकी जो भी मौसम विज्ञान विभाग है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का, उससे प्राप्त जो जानकारी है भाई कल 29 तारीख हो जाएगी, 29 ने और 30 ने जो प्री मानसून हम कह सकते हैं, प्री मानसून की अड़की फुड़की बारिश अपना हरियाणा प्रदेश में आने की आशंका है। तो जो भी अपना भाई बिजाई का हमारा काम है उस काम थोड़ा सा ध्यान रखें, और पानीपात हमने फसल में देना उस काम है ठीक है, पानीपात जो हमने देना है उस काम ध्यान रखें। और मौसम के हिसाब किताब से यदि कोई रासायनिक छिड़काव करना है कोई खाद उर्वरक देनी है तो मौसम का जो बयाल है उसने नज़र में रख के फिर हम काम करें। और आज भी कार्यक्रम छोटा है तो वह यानी भजन सुनवा दे हैं, गायक कलाकार हैं आज़ाद सिंह निदान। निदान है निदान है। तो ये आपने सुना भजन, गायक कलाकार थे आज़ाद सिंह निदान। और भाई आज कार्यक्रम छोटा है क्योंकि भाई इब तो ये आपने सुना भजन, गायक कलाकार थे भी आज़ाद सिंह निदान। और कार्यक्रम भाई आज छोटा है भारत को और छोटा है कार्यक्रम भाई आज छोटा है भारत और आयरलैंड का जो T20 क्रिकेट मैच है उसके प्रसारण के कारण भी आगे का जो है, है, है, है, है,

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर न्यूज़ जोन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:30:08 हो चुके हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके साथी रिशिता का नमस्कार।
1: आपके साथी विशाल का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो है सांप्रदायिक सद्भावना के मूल्य।
1: जैसा कि रिशिता ने बताया, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे सांप्रदायिक सद्भावना का अर्थ है विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदाय के लोगों के बीच प्रेम, सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना बनाए रखना, जहां अनेक धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना हमारे समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सांप्रदायिक सद्भावना समाज में शांति, एकता और विकास को बढ़ावा देती है। जब सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब देश मजबूत बनता है। सांप्रदायिक सद्भावना एक मजबूत, शांतिपूर्ण और विकसित भारत की नींव है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रेम और भाईचारे की भावना अपनाकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान दे।
0: बिल्कुल विशाल, धार्मिक सद्भावना किसी भी बहुसांस्कृतिक समाज की रीढ़ है, और भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में, जहां अनेक धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं, धार्मिक सद्भावना ही वह धागा है जो इस सामाजिक ताने बाने को एकजुट रखता है। यह केवल अलग अलग समुदायों के बीच सहनशीलता तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मान्यताओं, परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रति सच्चे सम्मान और स्वीकृति की भावना है। जब समाज में सद्भावना का वातावरण होता है दोस्तों, तो आपसी विश्वास बढ़ता है, सामाजिक स्थिरता मजबूत होती है और विकास के लिए सही परिस्थितियां भी बनती हैं। इसके अतिरिक्त समाज में सद्भावना का यह वातावरण तभी संपूर्ण माना जा सकता है जब इसका लाभ हर वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों तक भी समान रूप से पहुंचे। साथियों, माइनॉरिटीज को रोजगार सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी भी सबको साथ लेकर चलने वाले और न्यायपूर्ण समाज की मुख्य जिम्मेदारी है। जब तक किसी समुदाय को आर्थिक अवसरों से समान रूप से नहीं जोड़ा जाता, तब तक सामाजिक समानता का सपना अधूरा ही रहता है। सरकार द्वारा समय समय पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष रोजगार योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ऋण सुविधाएं चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य इन समुदायों को मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है।
1: बिल्कुल, जैसा कि रिशिता ने बताया, अनेकता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, आज है रविवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। आज की जो पहली फरमाइश है वो है करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, हरिपाल रोड, मीनाक्षी तिवारी। कैथल से मधु नायक, रोहतक से महेंद्र शाह, हिरेंद्र, जितेंद्र, हर्षित, मानसी।
0: और साथ ही चरकी दादरी से आप हैं जगनेश सांगवान, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद पुष्पेंद्र, भिवानी से जितेंद्र खेड़ा।

और बकबुड़वा पथरिया से नरेन और कुसुम नितान। साथियों, आप सभी की फरमाइश का ये गीत है फिल्म बधाई हो से, जिसे आवाज़ें दी हैं गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने, संगीत दिया है तनिष्क बागचे ने और बोल लिखे हैं मेलोडी ने। आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: साथियों, भी हमने सुना आपकी पसंद का ये गीत फिल्म बधाई हो से। आवाज़ें थी गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ की, संगीत दिया था तनिष्क बागची ने और बोल लिखे थे मेलोडी ने।
1: बिल्कुल, जैसा कि ऋषिता ने अभी बताया था कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा, रोजगार और विकास के समान अवसर देने में सरकार का कर्तव्य है। रोजगार सुविधाएं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। उन्हें कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण, स्वयं रोजगार के लिए व्यवसाय शुरू करने में जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इससे देश में आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा विशाल आपने। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।
1: बिल्कुल, फिल्म ये जवानी है दीवानी से ये गीत है। गाया है रेखा भारद्वाज, विशाल डडलानी ने लिखा है, अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया है प्रीतम ने। और जो आज की अगली फरमाइश है वो है बेरडी से हुक्म करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची।

0: तन्नु, कोटवा नारायण, बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, दुबिहा निवेदा गाजीपुर से, प्रत्येक राय, रोशनी, प्रांजल।
1: साथ ही खोखरा वाली गांव से आप हैं विनोद, विशाल बरासा, विकास, रोशनी और शगुन बरासा। रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह और ऋतु सिंह। पत्रोड़ा से आप हैं मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और सुनील। पिपरिया कबीर धाम से आप हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता।
0: आइए सुनते हैं गीत।
2: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से, गाया था रेखा भारद्वाज और विशाल डडलानी ने, लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, जिसकी फरमाइश आई है पिपरिया कबीर धाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा रमजम गुप्ता, अकोला महाराष्ट्र से सुशीला मंदूरकर सदानंद, गौरव निशा रानी नागरोकर, नांदुरा से संतोष वसाने उषा, ऋषिकेश अनिकेत वसाने, लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश समीर राजकुमारी पटेल, वाकौड़ी से उत्तम जमघाड़े, स्वराज जमघाड़े, स्वरीत पोपलवाड़, संघर्षा और संविधान होंगड़े।
0: आदर्श गांव बलैली जिला भिवानी हरियाणा से दर्शनलाल बंसल, सुदेश, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश, तमन्ना बंसल। भाटापारा दतरंगई से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक, जावेंद्र। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरभ, साइना, निवान।
1: ये गीत है फिल्म रॉय से, जिसे संगीत दिया है मीत ब्रॉस अनजान ने, बोल लिखे हैं कुमार ने और आवाज़ें हैं मीत ब्रॉस अनजान और कनिका कपूर की। आइए साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: साथियों, अभी हमने सुना ये गीत फिल्म रॉय से। संगीत दिया था मीत प्रोसनजान ने, बोल लिखे थे कुमार ने और आवाज़ें थी मीत प्रोसनजान और कनिका कपूर की।
1: साथियों, जो अगली फरमाइश है वो है बठिंडा से, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वीरेंद्र, सिमरन और प्रेम। गोला बाजार बक्सर से अभिनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित।
0: हिंगोली से आप हैं शाहजी बोड़के और नंदा। हदगांव आष्टी महाराष्ट्र से सुधाकर कामले, संदीप कामले। तालुका पूर्णा देगांव से सदाशिव और मोहला हिसार से आप हैं राजकुमार। गीता, अमन, सानिया, सुभाष, उषा, राहुल, आरती और रोहित ढोचक।
1: फिल्म स्त्री से गीत है, गाया है आस्था गिल, सचिन सिद्धवी और साथियों ने। लिखा है वायु ने, संगीत दिया है सचिन जिगर ने। आइए साथियों, सुनते हैं गीत।

0: साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म स्त्री से। गाया था आस्था गिल, सचिन सिंधवी और साथियों ने। लिखा था वायु ने, संगीत दिया था सचिन जिगर ने।
1: और साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को रोज़गार सुविधाएं मिलने के बारे में, तो आपको बताएं कि रोज़गार के समान अवसर मिलने से अल्पसंख्यक समुदायों में आत्मनिर्भरता बढ़ती है, जीवन स्तर सुधरता है और वे राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बन पाते हैं। इसके अतिरिक्त जब विभिन्न क्षेत्रों यानी सरकारी सेवाओं, निजी उद्योगों और स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ती है, तो यह सामाजिक समरसता को भी मजबूत करता है, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा अक्सर सामाजिक तनाव को कम करने में सहायक होती है। हालांकि इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा के अवसरों को सुदृढ़ करना और साथ ही भेदभाव रहित कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन ही वास्तविक सामाजिक और आर्थिक समावेशन सुनिश्चित कर सकता है। यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे, ताकि योग्यता के आधार पर हर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को समान अवसर मिल सकें और किसी प्रकार के पूर्वाग्रह की गंजाइशन ना रहे। साथ ही बड़े उद्योगों और कॉरपोरेट कत्र को भी विविधता को बढ़ावा देने वाली नियुक्ति नीतियां अपनानी चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक युवा वर्ग को निजी क्षेत्र में भी बराबरी से प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मेलों और कौशल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले तक सरकारी योजनाओं की पहुंच को आसान बनाता है। इस प्रकार के प्रयासों से न केवल व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति होती है, बल्कि पूरे समुदाय का सामाजिक आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठता है। अंत में यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज़ के रोज़गार से जुड़े मुद्दों को केवल कल्याणकारी दृष्टिकोण से ना देखा जाए, बल्कि इसे राष्ट्रीय मानव संसाधन के बेहतर उपयोग और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में एक रणनीतिक निवेश के रूप में समझा जाए। गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज और नागरिक समाज की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संगठन ज़मीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करते हैं। डिजिटल युग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और तकनीकी क्षेत्र में भी अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में विशेष पहल की आवश्यकता है। फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और स्टार्टअप जैसे नए रोजगार मंडलों के माध्यम से माइनॉरिटीज उद्यमियों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। जब सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज मिलकर सामूहिक प्रयास करते हैं दोस्तों, तभी अल्पसंख्यकों के लिए सच्चे अर्थों में समावेशी रोजगार परिवेश का निर्माण संभव हो पाता है। और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। उम्मीद है आपसे मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी समाचार होंगे। समाचार हम रिले कर रही हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the Guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में

0: तीन जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar.

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा में पहले जान लीजिए आज के शेष कार्यक्रम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 बजे, माफ़ कीजिए, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं आज शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर आशा हुड्डा से बातचीत आप सुन पाएंगे, विषय होगा मछली तालाबों की देखभाल। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

आज के शेष कार्यक्रम आपने जानी और अब आपको बता दें कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पब्लिक स्पीक, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 9:30 बजे, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल शाम 6:30 पर साप्ताहिक समाचार समीक्षा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले होगी।

है 7:35 पर आप सुनेंगे समसामयिक चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे। युवा संसार कार्यक्रम होगा कल शाम 5:30 जिसमें युवा साथी सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो जीनियस। NCERT प्रायोजित कार्यक्रम दोपहर 12:30 प्रसारित होगा। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर रीना चौहान से बातचीत आप सुन पाएंगे कृषि रसायनों में सावधानियां।

0: संसार में शाम 7 बजे सुनिएगा चौपाल फोन इन कार्यक्रम। खेत खलिहान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर चर्चा रहेगी गन्ना फसल में खाद पानी का प्रबंध। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल प्रातः 7:15 पर हनीफ अहमद खान से आप सितार वादन सुन सकते हैं, राग मियां की तोड़ी। इसी कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत के एक और कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे सुनिएगा हनीफ अहमद खान का सितार वादन ही। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 8:25 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 9 बजे। चित्रपट संगीत दोपहर 1:10 पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम रात्रि 10:30। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा। हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रहे हैं। 6:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले होंगे।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे

0: शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
0: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: प्रदीप,
0: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में विमानन और युद्धपोत निर्माण क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों पर गर्व जताया और कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हुआ। श्री मोदी ने मौजूदा वैश्विक संकट की स्थिति में राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से कृषि भूमि को रसायनों से दूर रखने, प्राकृतिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे को हटाने का संदेश दिया। श्री मोदी ने लोगों से गणेश उत्सव पर गणपति की मिट्टी की बनी मूर्तियां खरीदने का आग्रह किया। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के गांव नौलखा में अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से विभिन्न स्कूलों की 276 जरूरतमंद और मेधावी छात्राओं को साइकिल प्रदान किए। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विमानन और युद्धपोत निर्माण क्षेत्र भारत की उपलब्धियों से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस महीने भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि जून के महीने में ही कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा वैश्विक संकट की स्थिति में राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर कुछ जगहों पर देशवासियों ने सोने की खरीद तथा विदेशी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दिया और कार पूलिंग को प्राथमिकता दी।
1: मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने तकनीक और यांत्रिक मेधा के मौजूदा दौर में अपनी रचनात्मकता बचाए रखने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किए जाने का जिक्र किया और इस पहल के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बधाई दी। श्री मोदी ने दूसरे विश्वविद्यालयों से भी ऐसी पहल पर विचार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नई तकनीक के लिए तैयार करने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयास की चर्चा भी की।
1: साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अहमदाबाद में हुई विश्व योगासन चैंपियनशिप की चर्चा भी की।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की

0: तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश में युवा खिलाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
0: आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेटकर परिवार द्वारा लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा करवाने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है।
1: श्री मोदी ने बताया कि योजना के तहत पीड़ित परिवारों को अब तक 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ भी श्रोताओं के साथ साझा किए। प्रधानमंत्री ने कृषि भूमि को रसायनों से दूर रखने और ज्यादा से ज्यादा खेती प्राकृतिक उर्वरकों के साथ करने के उनके अनुरोध का समर्थन करने और हर तरह से सक्रिय सहयोग देने के लिए देशवासियों के प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया और प्लास्टिक कचरे को इको ब्रिक यानी पर्यावरण अनुकूल ईंटों में तब्दील किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय मिट्टी की बनी मूर्ति खरीदने का आग्रह किया।
0: गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले अभी से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि आपके घर या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है, इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है।
1: श्री मोदी ने कैच द रेन अभियान की याद दिलाते हुए वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है। उन्होंने डोमिनिका गणराज्य की ब्रह्म कमल डोमिनिकन नामक एक टीम का उल्लेख किया, जिसके सदस्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण सीख रहे हैं और वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं।
0: कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है, इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने असम के हरगिला पक्षी की चर्चा करते हुए समाज को अंधविश्वास के प्रति आगाह भी किया। श्री मोदी ने कहा कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो विज्ञान, अनुभव और तथ्य के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत के गांव नौलथा में अंत्योदय फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों की 276 जरूरतमंद और मेधावी छात्राओं को स्कूल आने जाने की सुविधा के लिए साइकिल वितरित की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 3 नए कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के माध्यम से इस क्षेत्र में पहले भी 500 साइकिल दी जा चुकी है, जबकि लक्ष्य 1,000 साइकिल वितरित करने का है। आज हरियाणा के सभी जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विज ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने वाला एक सशक्त मंच बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश में हो रहे विकास कार्यों, नए नवाचारों और उन गुमनाम नायकों को

0: रहा है, ब्याज कितना है। लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: RBI कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: मीडिया वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर न्यूज जोन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:20 और 55 सेकंड हुए हैं। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई ने भाई अनिल भाई की राम राम। पर मौसम की बात करा तो मौसम भाई खाखड़ सा हो रहा है, हल्की सी बादलवाई भी है, मौसम में गर्मी है, तपिस है, और आज पूरा दिन ये कह सकें कि एक अच्छी गर्मी वाला भाई आज दिन रहा, तपिस वाला दिन रहा। और जो मौसम काल है, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सार है उसके द्वारा प्राप्त जो जानकारी है भाई, 29-30 तारीख ने जो प्री मानसून है उसकी अड़की फुड़की बारिश भी अपना हरियाणा प्रदेश में उसके है। तो भी जो भी हम खेत के आर के काम करें, चाहे रासायनिक छिड़काव की हम बात करें या भाई हमने पानी पात देना है, रासायनिक खाद हम डालें, दूसरे जो हमारे कोई काम है, बिजाई का है, नुड़ाई का है, गुड़ाई का है, मौसम का जो अनुमान है, पूर्वानुमान है, उसने ध्यान में रख के और फिर जो हम भाई हमारे खेती बाड़ी के काम है वो अपने करने हैं। बाकी भाई आज कार्यक्रम छोटा है तो भैया ने शुरुआत में भजन सुनवा दे हैं, गायक कलाकार हैं आजाद सिंह, निदान।

तो भी आपने सुना भजन गायक कलाकार थे आज़ाद सिंह निदान, और आज भी भारत और जो आयरलैंड है उसके बीच T20 मुकाबला भी खेला जाना है, उसके प्रभाव से भी कृषि कार्यक्रम इतना है। अनिल भाई इंदु इजाजत, सारे बण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर 6:30 होने को है। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा, कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: में सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट

0: परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहाँ फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया

एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत और महिला T20 विश्व कप में

ये रात फिर न आएगी इस फिल्म से गीत हमने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में। SH बिहारी के बोल थे, OP नैयर का संगीत था। आइए अब सुने वक्त फिल्म से गाना। आवाज़ें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। साहिर ने इस गीत को रचा है और इसके लिए धुन बनाई रवि ने।

का गीत हमने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रही हैं, रात्रि के 11 बजने को हैं

0: समाचार होंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में, रिले कर रही हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:10:13 हो चुके हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारे आज के प्रसारण। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।